0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: आसमान झुक सकता है लेकिन प्यार कभी कमजोर नहीं होता और किसी के सामने झुकता भी नहीं है लेकिन हम झुकेंगे जरूर आप सबको प्रणाम करने के लिए आप सबका स्वागत करने के लिए तो नीतू का प्यार भरा नमस्कार प्रणाम और आप सभी को इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग सुबह के 5:06 हो चुके हैं एंड अगस्त महीने की अंतिम तारीख ऑफकोर्स 31st of August बस ये जैसे इस दिन की शुरुआत हुई है ये महीना खत्म हो चला है अगले महीने की ओर बढ़ेंगे हमारा और आपका साथ कभी नहीं छूटेगा दैट्स फॉर श्योर सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल वेल ट्यून्ड टू रेडियो मस्टी और अभी के लिए नीतू आपको ले चली है यादों की दुनिया में बस आपका इंतजार आपके मैसेजेस के जरिए अपनों के नाम पैगाम 9 9 9 9 9 9 फर्स्ट डे मंडे है आज तो चलिए स्कूल कॉलेज के लिए काम पर जाने के लिए डेफिनेटली आप लोग तैयार हो रहे हैं तैयार हो जाइएगा मूड को एकदम बेस्ट बेस्ट बनाते चलेंगे विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 4:05, थैंक यू सो मच. 5:49, 12:94 पर चले काफ़ी मैसेजेस हैं यहाँ पर, तो लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग. नमस्कार प्रणाम आप सभी को. है ज्योति कैसे फ्रॉम शातुबिनागस एज यूजल. आशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार के नाम यहाँ पर है. कौन ऑन 5:49, 12:94. मिस्टर जेशन गुड मॉर्निंग आपको. साथ में हर हर महादेव आपको भी. भाई सूरज शर्मा सजादा परिवार त्रियोली से हैं. शुभ सोमवार आपको. अंजनी जी कैसी हैं. प्रणाम नीतू प्रणाम. रेशमा बीमा लंजुक्री शाकेशव नील मायशा तानिया इंदिरा जी आप है फ्रॉम मोता ब्लॉश. और यही अगला गाना आपके नाम चलाते हैं. एंड मेरी प्यारी बेटी का आज जन्मदिन है तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं. प्रणाम नानी जी. नानी कमला इंदिरा नंदा अर्चना ओबिलक परिवार फ्लोगयाल की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं. हर हर महादेव आपको. सुया बिहारी फ्रॉम कंगोमा हैप्पी मंडे. एंड जितने भी लोग स्कूल कॉलेज काम पर जा रहे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक. बो को आज विश कर रही है.

0: काश ना हर कोई अपने साथ होते, हमारे साथ साथ चलते। लेकिन लाइफ में कोई आता है, कोई चला जाता है, लेकिन यादें छोड़कर चले जाती हैं। That's for sure.
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Masti.
0: हर हर महादेव आपको, बेटा है नितेश, फ्रेंड्स हैं और आपके लिए मीना रामतिकल फ्रॉम मोताब लॉज। गुड मॉर्निंग सपना, कैसे है माय डियर? आपके लिए कहते हैं, आप कहते हैं कि प्लीज नेक्स्ट गाना गुजार टू माय जान प्रकाश, जो आपसे बहुत प्यार करती है ना, शो आप भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, है ना? तो चलिए ये अगला गाना डेफिनेटली आपके लिए। नमस्ते हर हर महादेव, आप है कौन? भाई महेंद्र, और यहाँ पर आपने बिल्कुल लंबा सा मैसेज भेजा है, बस हमारी तारीफ कर रहे हैं, बस आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए, ये तो है। तो चलिए नेक्स्ट गाना आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको सरोज, राजन, मोनिका, उमेश, पूनम, उर्वश, कथबोन एंड टू ऑल द रेडियो मस्ती फैंस। गुड मॉर्निंग आपको जयशन, हरदयाल जी, हैव अ नाइस डे अहेड आपके नाम पूरे परिवार के लिए। कैसे अब्दुल, कैसे सायरा बानू, काम पर लग गए? बों कुराज, तो बों कुराज टू ऑल दोज एट वर्क। अंजलि जी भी साथ दे रही है सुबह सुबह, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। मिस्टर टोनी फ्रॉम रोशबुआ, एंड बस नेक्स्ट गाना आप कहते हैं आपके पूरे परिवार के लिए। और आज आप कहते हैं कि डोंट बी कन्फ्यूज बाय अदर्स एडवाइस, जस्ट लिसन योर हार्ट्स वॉइस इज गॉड्स चॉइस। हाँ जी, काफ़ी लोग कहते हैं हमसे ये करो वो करो, अच्छी बात होती है, लोग सलाह देते हैं, लेकिन आप अपने दिल की बात सुने ना, हमेशा दिल सच कहता है, लेकिन दिमाग का भी आपको इस्तेमाल करना होगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते आपको बहुबू से धनेश्वर जी, पत्नी सुनीता, रेखा, संजीव, निशा, दवे दुस परिवार, थैंक यू सो मच।

0: बस इस गीत को सुनकर अमृता जी कहती है फ्रॉम पॉइंट टू साबलवानी तो क्या बात है, ऐसे गाने सुनकर स्पेशली दिस वन आपके फेवरेट में से है, तो रियली होप आपने खूब एंजॉय किया।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

0: Your daily horoscope.
1: Orange.
2: Aries. Mesh Rashi.
3: शुरुआत तो हो चुकी है भाई। चलिए एरीज वालों, आज का दिन आपके लिए उम्मीद और खुशियों की छोटी छोटी सौगात लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही खबर मिल सकती है। वहीं सिंगल लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो भी सकती है जो दिलचस्पी जगाए। परिवार और रिश्तेदारों का साथ आपको मजबूत बनाएगा।
2: टॉरस वृषभ राशि।
3: मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन आपकी मेहनत आर्थिक स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी। पैसों से जुड़ी निजी बातें हर किसी से साझा ना करें। शेयर मार्केट में कदम बढ़ाने से पहले अच्छी तरह सोच लें। किसी करीबी का अचानक आना पुरानी यादों को फिर से जीवंत कर सकता है। वैसे शाम को दोस्तों के साथ घूमने या छोटी सी पार्टी का कार्यक्रम बन जाए तो दिन का मूड और भी खुशनुमा हो सकता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
3: आज ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत का परिणाम आखिरकार आपके सामने आने लगेगा। सफलता के संकेत मजबूत हैं। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात दिल को खुशी देने के साथ भावुक भी कर सकती है। संतान की खुशी के लिए कोई जरूरी या पसंदीदा खरीदारी हो सकती है। वैसे खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आप स्थिति संभाल भी लेंगे।
2: कैंसर कर्क राशि।
3: आज कुछ मामलों में स्थिति थोड़ी उलझी हुई नजर आ सकती है। दैट्स व्हाई जल्दबाजी के बजाय समझदारी से काम बढ़े, आगे बढ़ाए। परिवार के किसी बात को लेकर मतभेद हो तो प्यार से बात करना बेहतर रहेगा, है ना। प्रॉपर्टी या लोन से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है और सरकारी काम में देरी परेशानी कर सकती है, लेकिन धैर्य रखने से रास्ता डेफिनेटली मिलेगा।
2: लियो सिंह राशि।
3: ऑलराइट, आर्थिक मोर्चे पर आज किस्मत आपका साथ देती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कारोबार में पार्टनर के साथ भविष्य की नई योजनाओं पर बातचीत अच्छे परिणाम दे सकती है। स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाओं का आनंद लेने का मौका मिलेगा। निवेश के नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन उत्साह में आकर जल्दबाजी ना करें।
2: वर्गो कन्या राशि।
3: आज कोई बड़ा सपना सिर्फ सपना न रहकर उसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम बन सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को गहरी संतुष्टि मिलेगी। यात्रा को फिलहाल टालना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, पेशेंट पेशेंट आप। माता पिता की कोई सलाह आज बेहद काम साबित हो सकती है। संतान के भविष्य से जुड़ा फैसला आगे चलकर आपको गर्व महसूस करा भी सकता है। बस सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि आज आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
2: लिब्रा तुला राशि।
3: वेल, आज आपको अपनी सूझबूझ और सतर्कता दोनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। कुछ विरोधी आपकी राह में परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी की स्थिति से अपने पक्ष में आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे और सफल भी होंगे। मन में कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की खुशी मिल सकती है। आय बढ़ाने का नया रास्ता खुल सकता है। सामाजिक या सेवा से जुड़े किसी काम में सम्मान मिलने से आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगे।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
3: परिवार और अपनी सेहत दोनों को आज नजरअंदाज ना करें। जीवन साथी के साथ छोटी सी नोकझोंक संभव है, लेकिन बातचीत में प्यार बनाए रखेंगे तो बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कारोबारियों में उनके लिए दिन खास रह सकता है। मेहनत के दम पर बड़ा ऑर्डर मिलने या किसी अच्छे अवसर के आने के संकेत हैं। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। साथ ही बढ़ते खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
3: ऑलराइट, आज आपका प्रभाव लोगों पर साफ दिखाई देगा और सम्मान भी बढ़ सकता है। घर में कोई शुभ या मांगलिक आयोजन खुशियों का माहौल बन सकता है। सरकारी कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूर रह रहे किसी प्रियजन की याद आपको भावुक कर सकती है। संतान के करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला भविष्य की दिशा बदल सकती है और आज परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लंबे समय तक सकारात्मक असर छोड़ सकता है।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
3: मेहनत का फल मिलने और अधूरी इच्छाओं के पूरे होने की उम्मीद है आज। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली बॉस

0: को प्रभावित करेगी। समाज सेवा या किसी अच्छे काम में योगदान देने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। अतीत में हुई कोई गलती आज आपके लिए सीख बनकर काम आएगी। हालांकि कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी बात और काम दोनों में सावधानी रखें और पैसे के लेन देन में सतर्क रहना बहुत जरूरी है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज अवसर खुद आपके आसपास आते दिखाई दे सकते हैं। नया काम शुरू करने का विचार आगे चलकर लाभदायक साबित हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ छोटी मोटी बहस संभव है, लेकिन परिवार के बड़े आपकी स्थिति समझकर आपका साथ देंगे। महिला श्री मित्रों या सहयोगियों के माध्यम से व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं। वैसे यात्रा या घूमने के दौरान कोई ऐसी जानकारी मिल भी सकती है जो आगे आपके बहुत काम आएंगे। नया वाहन खरीदने की इच्छा भी पूरी हो सकती है।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: बस अंत में आपके लिए पाइसेस। सो आज मन में चल रही किसी दुविधा के कारण निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण डील अंतिम समय में अटक जाए तो परेशान होने के बजाय बी पेशेंट। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग उनका व्यवहार तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन जल्द प्रतिक्रिया माने कि आप जो हैं बच के रहें उससे। नहीं, आपके अगर आप उनसे बहस में लग जाएंगे तो प्रॉब्लम में आप ही पड़ सकती हैं। नौकरी के नए अवसर उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकते हैं। वैसे जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस से बचना बेहतर है। घर और प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं दोनों। सेहत का और खासकर अपने खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि छोटी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है। तो बस कोई परेशानी ना हो आपके जीवन में, सब सुखी सुख हो। बेस्ट ऑफ लक एंड लवली डे अहेड।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: कैसी है प्यारी सी दूधी कागिया दिख रहे और सेंड्रा गुजना परिवार, नमस्कार प्रणाम सभी को। चले जी प्यार मोहब्बत के साथ अगला गाना आपके नाम चलाते हैं। यहाँ पर ओम नमः शिवाय सोनम भोला आपकी मामा हैं, साथ में एंजल अश्विनी अभिषा प्रिंस कर व एंजल मयान सी और आपके सभी परिवार के नाम। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको इस वक्त मेबग बाजार में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको बोंको हाज। अभिषा अभिष धरम रीना वीरू श्वेतन माया अंजू भी शहजाद एंड सभी डियावांस के नाम। आपके लिए भी अनुषा होरी राम और प्लान दे रोश आपके पापा आपके मामा सब परिवार को नमस्कार प्रणाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आप जो फैमिली खुशनुआ से आज विजल आप हमारे हम सफर बने हुए हैं, बहुत धन्यवाद।

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Dekho ye kaun
2: aaya. बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन आएगा या फिर आएगी, वो भी संक्षिप्त समाचारों के लिए। 5:56 छह बजे आप सुन पाएंगे समाचार, उसके बाद इस म्यूजिकल कारवां को आगे बढ़ाएंगे। साथ निभाते रहिएगा
3: मुझको।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 6 बजे हैं. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार नीतूषा. श्रोताओं को भी नमस्कार. पिछली आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते पाए गए थे. तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या ज़रूर बढ़ी है. अब एम्सो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है. पहले की तरह रास्तों पर चलकर और पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे के बजाय अब इस कार्यवाही के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा. एम्सो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी. इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था. ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और किया गया हो. यदि ये अभियान आगे बढ़ा तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाला दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा. समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के लिए सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है. हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है. इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नाम का एक नया टूल लॉन्च किया गया है. इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थलों के सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं. ऐसी आशंकाएं हैं कि इस आपदा में लापता हुए 2500 से ज़्यादा लोग इन सुरंगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं. बचाव टीमों में भारत और चीन के विशेषज्ञ भी शामिल हैं. पिछले कई दिनों से अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है. पिछले बुधवार को अचानक उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 794 तक पहुंच गई है. आखिर में स्थानीय मौसम का हाल. आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो आज दिन की 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी. मास्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होती रहेगी. हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है. ऊंची जगहों पर न जाएं और खासकर गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर क्रॉसविंड वाली जगहों पर खास सावधानियां बरतें. प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा. दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी और इनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा. मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों में न जाने की मांग की जाती है. तापमान सामान्य से कम रहेगा. सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस. साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह 6:19 पर सूर्योदय, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा.

0: तो ये थी अब तक की खबरें, हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 बजे मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio Musti.

कोई साथ दे ना दे, निभाए ना निभाए, आप तो हो ना हमारे साथ, और रेडियो मस्ती हम भी हैं ना हमेशा आपके साथ। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। 6:08 लगे हाथ, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू आकाश एंड मनसुख परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किशन रघुनाथ फ्रॉम सुरीनाम गाना कहते हैं, मेरी लवली वाइफ पे माला और मेरी प्यारी सी दो बेटियां जिया और रिया सब परिवार के लिए नमस्कार। कैसे हैं ललिता जीतन फैमिली, गुड मॉर्निंग।

चंदा जी है रिविया दी जोंगी से कहती हैं स्वीट मेमोरीज एंड लेट पति रवीन को बहुत याद कर रही हैं बस आपके दिलों दिमाग में हैं यश आश्ले बहू एंड दर्शनी आपके पूरे परिवार के नाम

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Masti.
2: ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, मस्त गाने चल रही है रेडियो मस्ती और आप जैसे प्यारे प्यारे हमारे दोस्त, थैंक यू सो मच। कैसी है प्रेमिला जी? प्लंदी पापा से हैं और आपने मैसेज भेजा लेकिन हमको मैसेज नहीं मिला था, लेकिन अभी आपका मैसेज आया तो नेक्स्ट गाना आपके नाम पूरे परिवार के लिए। हैप्पी 15th बर्थडे टू प्रिंसेस ईशाली और ये है ईशाली लक्ष्मण ऑफ स्विट्जरलैंड। ध्रुव शनाया रवीश प्रीशा लवशा दिया वंस की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट गाना किन के नाम चलाते हैं यहाँ पर बर्थडे विश है तो वेदिता आपके लिए ऑलरेडी एक सरप्राइज बर्थडे के लिए आपके लिए मैसेजेस आया है। डेफिनेटली शी इज ऑन द वे, आप ही काम पर जा रही हो, बों कुहाश, प्लीज ड्राइव केयरफुली। डू लेट मी नो अगर बारिश हो रही है या फिर मौसम सुहाना है आपके यहाँ। सैकत नफ नफ दोज नफकार पर बों कुहाश टू यू ऑल।

0: कोई कुछ भी कह ले, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, हद से गुजर जाती है। 6:23 बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: बस अब मुलाकात होगी कल, लेकिन 12 से 2 के बीच। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे सेफ, प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हवा तेज है, गाड़ी में होंगे, मोटरसाइकिल बाइसिकल, ध्यान से हाँ, एंड अपने आप को वार्म रखिएगा, स्टे सेफ।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। एमसो ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से आवारा कुत्तों की गिनती का अभियान शुरू करने वाला है। यदि यह अभियान सफल हुआ तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाले दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। एआई से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल में अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा, साथ ही एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी का निर्माण होगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 794 तक पहुंची। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते पाए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या बढ़ी है। अब एमसो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलकर और पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे के बजाय अब इस कार्यवाही के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। एमसो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और किया गया हो। यदि ये अभियान आगे बढ़ा तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाले दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। चवि बाचू, विधिमासी बोरन।
1: सच तो ये है, खासकर जब हम डेटा को देखते हैं, 2018 में ग्वाटेमाला में 69,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट से इसकी कमियां सामने आई। जमीनी सर्वे के मुकाबले ड्रोन से देखे गए कुत्तों की संख्या काफी कम थी। जिन 3 इलाकों में अध्ययन किया गया उनमें ड्रोन से ज्यादा सिर्फ 34% कुत्ते ही पता चल पाए, जबकि पैदल चलकर गिनती करने पर ज्यादा कुत्ते मिले थे। नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता इस परियोजना के मकसद का तो स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी कामयाबी को लेकर उन्हें चिंता है। खासकर इसलिए क्योंकि इस पहल पर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होने वाले हैं। एमसो के निदेशक तिंगारेन गोविंदा सामी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, फिर भी जब से उन्होंने संगठन की कमान संभाली है ये उन्हीं का विचार रहा है। उनका दावा है कि उन्होंने विदेशों में भी ऐसे ऑपरेशन किए हैं, लेकिन पेशेवर गोपनीयता का हवाला देते हुए वे ये बताने से इनकार करते हैं कि ये ऑपरेशन कहाँ किए गए। तरीके या मेथोडोलॉजी को लेकर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ बातचीत चल रही है, यहाँ भी जानकारी बहुत कम है। निदेशक इसे एक संवेदनशील मामला बताते हैं। हालांकि वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि ड्रोन स्पेशलाइज्ड कई कंपनियों ने पहले ही इसमें दिलचस्पी दिखाई है। जहाँ तक एनजीओ की बात है तो वे एक साफ बात की ओर इशारा करते हैं। ड्रोन उड़ाना एक बात है और डेटा का विश्लेषण करना बिल्कुल अलग बात है।
0: मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने में प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है। हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। निर्मा नारायण रेड्डी ने उनसे बात की।
2: Donc un déficit du price stabilization account, ça veut dire que
0: अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी कहती है प्राइस स्टेबिलाइजेशन अकाउंट में घाटा होने का अर्थ है जब वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं तो एसटीसी यानी सरकार को स्थानीय स्तर पर ईंधन के दामों में संतुलन लाना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें दाम कम करने में दिक्कतें आ रही हैं। हम जानते हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन के दाम बढ़कर $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद कीमतें कम हुई हैं और अब दाम $80 से $90 प्रति बैरल तक पहुँचे हैं।

0: 80 à 90 $ le baril.
1: समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है। इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना। निर्मा नारायण रेड्डी, गीता स्नारायण।
2: अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स अफ्रीकन यूनियन के 55 सदस्य देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने और उसे रेगुलेट करने की क्षमता का आकलन करता है। ये विश्लेषण 8 मुख्य आधारों और 80 इंडिकेटर्स पर आधारित हैं, जिन प्रमुख क्षेत्रों की जांच की जाती है। उनमें राष्ट्रीय रणनीतियां, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, संस्थागत क्षमताएं, नैतिकता और अधिकारों से जुड़े मुद्दे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च, कौशल और AI से संबंधित निवेश शामिल हैं। इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 22 अफ्रीकी देशों के पास पहले से ही एक समर्पित राष्ट्रीय AI रणनीति है, जबकि 21 अन्य देश अभी ऐसी रणनीति विकसित कर रहे हैं। मॉरिशस के लिए डैशबोर्ड अभी 60 का पॉलिसी प्रोग्रेस स्कोर दिखाता है। ये इस क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियों की प्रगति को मापने वाला एक इंडिकेटर है। हालांकि ये अभी देश के कुल स्कोर को नहीं दर्शाता है। सभी चुने गए मानदंडों के आधार पर 55 अफ्रीकी देशों की पूरी रैंकिंग इस साल की चौथी तिमाही में जारी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अफ्रीका में AI गवर्नेंस की स्थिति का अवलोकन प्रदान करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां और प्रयासों की आवश्यकता है।
1: स्थानीय अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, उभरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ये खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना के अंतर्गत एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी शामिल है। जुराम गुलाम, रजनी बिकर।
3: हल्की रोशनी वाले कक्ष के द्वार पर लाल रंग के सोफे मानो कोई महोत्सव। हर कोई अपने कार्य एवं भूमिका निभाने की तैयारी में। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाना चाहता है, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक के सफर तक। इस तरह मॉरिशस एंटरटेनमेंट एकेडमी कायम करना, सिनेमा के एक स्टूडियो के साथ साथ मॉरिशस में एक कैंपस भी। MFDC के CEO केविन गति ने कहा, यही उम्मीद है कि बॉलीवुड का समा बंध जाए। आज जो ढांचे कायम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही हमारी स्थानीय कहानियों को भी विदेश की ओर भेजने के लिए तैयार है। परियोजना की कुल लागत कोई 5 बिलियन रुपए। चूंकि ये रकम आसमान से तो मिलने वाली नहीं, ना ही किसी स्पेशल इफेक्ट से, अतः MFDC ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के वास्ते एक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। मकसद है उनसे पहली भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। द स्टूडियो ग्रुप के फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट प्रमुख मेरेडिथ ऑर्नट ने कहा,
4: Sometimes sports and music, and at the heart of these campuses is education and training.
3: ये फिल्म स्ट्रीमिंग है, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, गेमिंग भी, कभी पोस्ट, कभी संगीत। कैंपस में मुख्य रूप से शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा स्थानीय नौजवानों के लिए, ताकि यहाँ उद्योग कायम हो, न केवल स्टेज तैयार करें। कास्टिंग पर पॉल ब्रेट मौजूद, वे बर्तानी सिनेमा के प्रोड्यूसर एवं फाइनेंसर हैं। मुख्य रूप से उसका वाली फिल्म द किंग्स स्पीच या लेजिस्कू द रॉ और अमेरिकी कॉमेडी फिल्म शेफ के लिए, जिसमें डस्टिन हॉफमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्कारलेट योहानसन शामिल। द स्टूडियो ग्रुप के सह संस्थापक एवं प्रोड्यूसर पॉल ब्रेट ने कहा,
5: स्मॉल आइलैंड, यू हैव मेनी मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड,
3: यहाँ पर भारी संभावनाएं हैं। एक छोटा टापू है, दुनिया के कई इलाकों के लोग हैं और जियोग्राफिकली भी अफ्रीका के साथ बहुत ही अच्छे संपर्क है। पूरे महाद्वीप में सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक, गल्फ राष्ट्रों के साथ भी बेहतरीन संपर्क है, चीन के साथ भी ये एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य है। दूसरी तरफ अपना रुमाल निकाल कर रख

0: की तैयारी कर लीजिए, माघी माओ या तुलसी की ही तरह एक शो होगा जिनके 200 एपिसोड्स होंगे। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।
1: Sur des histoires qui vont parler de Maurice.
0: Médiavoix Afrique के प्रोड्यूसर अलेक्जेंड्र रिडो ने कहा, ऐसी कहानियां हैं जो मॉरिशस के बारे में बताती हैं, मॉरिशन जनता के लिए, साथ में इलाकाई दर्शकों के लिए भी। दुनिया भर में लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह यहाँ लोग खास जिंदगी जी रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रोड्यूसरों को भी कैमरा एक्शन बोलने की चाह। मॉरिशन प्रोड्यूसर निवेन पारिमानन ने कहा, आधारशिला रख रही है ताकि 10-15 वर्षों या इससे कम अवधि में ही एक वास्तविक फिल्म उद्योग हो, हर साल कलाकार हो, फिल्म निकले। तब तक पॉपकॉर्न तैयार रखिए। MFDC की ओर से जल्द ही स्थानीय लेजेंड पर आधारित एक फिल्म प्रसारित की जाएगी। संकेत के लिए यही बता दें कि वे स्पाइडरमैन की तरह पोशाक तो नहीं पहनते पर नग्न ही घूमते थे, एक विनाशकारी तूफान के गुजरने के बाद लोगों को डराते थे।
2: अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि में मदद करते हुए जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मूल ढांचों पर फिर से गौर करना, ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में 20 से 25 अगस्त के बीच आयोजित सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोशन सिडसा 2026 में चर्चा में रहे मुख्य मुद्दों में से एक रहा। मॉरिशस के सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने इस सम्मेलन में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें अफ्रीकी महाद्वीप में मूल ढांचा विकास से जुड़े विभिन्न साझेदार एकत्र हुए थे। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थलों के सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस आपदा में लापता हुए 2500 से ज्यादा लोग इन सुरंगों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। बचाव टीमों में भारत और चीन के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पिछले कई दिनों से अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। पिछले बुधवार को अचानक उतरी इस विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 794 तक पहुंच गई है। उधर उत्तरी साइप्रस के समंदर में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोपों पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए ऊंची लहरों और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है जो आज सुबह 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी। मास्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे वाले जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान खासकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं और जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती हैं। ऊंची जगहों पर न जाएं और क्रॉस विंड्स वाली जगहों पर सड़कों पर खास सावधानी बरतें। दूर समंदर में तथा कुछ लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। दूर प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। इनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। इससे के लिए मछुआरों तथा समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन तटीय इलाकों में भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:19 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिया हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। तामारें रोड शामुनी में, तामारें रोड शामुनी में 68 साल के 68 years old श्री अनिरुद्ध जोयराम, श्री अनिरुद्ध जोयराम जो सोरेन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे, इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे श्री वशील जोयराम के मकान तामागे रोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 2:30 PM। फॉरेस्ट लेन फ्लोरियाल में 78 साल के 78 years old श्री गिरजा कुमार अजोदा, श्री गिरजा कुमार अजोदा जो डोक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे, इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री गुलशन अजोदा के मकान फॉरेस्ट लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूरिया 3 PM। हाईलैंड्स रोड फिनिक्स में 90 साल के 90 years old जनाब रोसेन अब्दुल्ला जो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा सुबह दस बजे इनके मकान हाईलैंड्स रोड फिनिक्स से उठाकर दफनाने के लिए तमाम मेल का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। नंबर 85 रॉयल रोड कोहोमोडेल में 95 साल की 95 श्रीमती महालक्ष्मी कोरलापू बंगारी, श्रीमती महालक्ष्मी कोरलापू बंगारी पैदाशी नाम चीनिया, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे, इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान नंबर 85 रॉयल रोड को मॉडल से उठाकर दफनाने के लिए सेंट जॉर्ज पेचिथरिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। नंबर 45 मोंसेल माफियानी रिविया दे क्रेओल में 66 साल की 66 years old श्रीमती हिरामती सी गुलाम पैदाशी नाम गणेश जो बाबून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे इनके पति श्री बानू सी गुलाम के मकान नंबर 45 मोंसेल माफियानी रिविया दे क्रेओल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। मरामाजो गुडलैंड्स में 32 साल के 32 years old श्री जेविन ग्रीधर जो चिपची नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके पिता श्री भगवान दास ग्रीधर के मकान मरामाजो गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहुश गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM।

78 साल की 78 years old श्री धनेश बैजनत जो धनेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे लाशा पलौदौंत एलियंसंस रॉयल रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 1:30 PM रेजिडेंस नाथुआ रोड ट्रियंग गुडलैंड्स में नाथुआ रोड ट्रियंग गुडलैंड्स में 84 साल की 84 years old श्रीमती सिवरानी परेस जो सोनी नाम से ज़रा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके बेटे श्री नवीन गणेश के मकान रेजिडेंस नाथुआ रोड ट्रियंग गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आफ्टरनून। सिमेट्री रोड अमोरी में 76 साल की 76 years old

श्रीमती पांजाली रंगेन, श्रीमती पांजाली रंगेन पैदाशी नाम जोनकी, जो सरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे, इनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे इनकी मकान सिमेट्री रोड अमोगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोगी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 9 पेयर रोबेयर जीरो गली रोशबामी, नंबर 9 पेयर रोबेयर जीरो गली रोशबामी, 76 साल की, 76 ईयर्स ओल्ड। श्री नारायण स्वामी उचामा, श्री नारायण स्वामी उचामा जो तो नारायण नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 2 बजे, इनकी अर्थी आज दिन की 2 बजे इनके मकान नंबर 9 पेयर रोबेयर जीरो गली रोशबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। अली जाक रोड नोवेल फ्रांस में 49 साल की, 49 ईयर्स ओल्ड। श्री मनोज कुमार बैं, श्री मनोज कुमार बैं जो मनोज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 12:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन की 12:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी बैं के मकान अली जाक रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोज बैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:00 PM। शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में 39 साल की, 39 ईयर्स ओल्ड। श्रीमती शालिनी धनपत भवानी दीन पिताशी नाम धनपत, जो शालिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे के मकान शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

उमर जैसे भी हो जो भी हो बस हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएगा। 6:56 टाइम टू से बाय बाय, थोड़ी देर में मॉर्निंग वेट, चलते चलते इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको यहाँ पर मामा रति पापा की शनाशी हो जसवी लविश भाई मादीपा मामा रेशमा पापा विराज पापा बॉबी नाना नानी सब परिवार के नाम। टेक केयर।

0: आपसे भी तो यही कहेंगे कि आप लोग भी हमारे इस महफिल में आते जाते रहिए. वेरी गुड मॉर्निंग. सुबह के 7:07 हुए हैं. विनीत आपके साथ है और हम साथ रहेंगे 9 बजे तक.
1: Radio Musti. Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vignes plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: बर्बाद नहीं करते हम लोगों को आबाद करने ही आते हैं
1: A good beat for your morning show RM2
2: Radio Musti
0: गुड मॉर्निंग सुबह के 7:13 हुए हैं अब तेरा क्या होगा काली अरे कुछ नहीं होगा क्या करें अब आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती विनीता आपके साथ हैं आपका फेवरेट शो चल रहा है मॉर्निंग बीट आज की सुबह उफ मैं क्या बताऊं आपको सर्दी बारिश ये गीली गीली सड़कें और ऐसे में मन तो यही करता है कि फ़ोन को साइड में रखो ब्लैंकेट के अंदर फिर घुस जाओ और कहो कल ऑफिस पक्का जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है ऐसा हो नहीं सकता ऐसा क्यों नहीं हो सकता नहीं नहीं हो सकता बच्चा ऐसा नहीं हो सकता लेकिन मेरे प्यारे लिसनर्स लाइफ में बारिश और डेडलाइंस दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते है ना सो अभी तो आपको काम पर जाना ही कर थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो ना अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करो थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो और फिर उसके बाद इस ब्यूटीफुल सी रेनी मॉर्निंग को आप वेलकम करो और वैसे भी मंडे है मन नहीं लगाओगे तो पता है ना क्या होगा तो मंडे में मन लगाना ज़रूरी है और हाँ जो लोग गाड़ी चला रहे हैं प्लीज़ बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग हम आपको बार बार कहते हैं हम आपसे एक बार फिर कहते हैं गिली गिली सड़कें हैं कभी कभी होता है ब्रेक लगाते हैं ब्रेक लगता नहीं है इसलिए स्पीड लिमिट पे ध्यान रखो थोड़ा सा गाड़ियों के बीच डिस्टेंस रखो और जो लोग कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे चला रहे हैं अगर आपको काम पर जाने की जल्दी नहीं तो अपना गाड़ी को कहीं पर साइड पर रख दो बाकी आप देखेंगे लंबी क्यों हो जाती है तो कम से कम उन बेचारों को जाने दीजिए फिर उसके बाद आप आगे बढ़ना ठीक है तो सुबह के 5:15 और अब हम यहाँ पर आपके

0: लेकर आए हैं गेम. टुडे वी आर द 31st ऑफ व्हाट. टुडे वी आर द 31st ऑफ अगस्त. अभी हाल में तो बोला था 1st ऑफ अगस्त, निकल गया 30 दिन. चलो कोई नहीं, जाने दो. तो ऐसा करते हैं कि इस दिन को भी मेमोरेबल बनाते हैं. अब हम आपके लिए विनर्स की तरफ से एक सवाल लेकर आए हैं. सही जवाब देंगे तो 500 रुपीस का आपको मिल सकता है एक वाउचर. नाउ यू हैव टू टेल मी अंटिल 6th ऑफ सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ दितोस लेसी मशीन. मैं पूत 3 kg यानी कि दो रेफरेंसेज हैं. Until 6th of September, what is the normal price and the promotional price of Ditus Lessive Machine Mais Poudre 3 kg ka, jinke do references hain. Aapko mujhe sahi jawab dena hai on 549 and 1294.
1: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: शीला कितने प्यार से चला रहे हैं यहाँ पर शीला शीला कुछ लोग तो ऐसे अदारी है शीला
1: मॉर्निंग बीट ओह गॉड वन मोर रिमिक्स अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स
1: A good beat for your morning show.
2: Come on.
1: RM2.
2: Radio Musty.
0: वैसे आई वॉज एक्सपेक्टिंग शीला लेकिन शीला की जगह यहाँ पे कोई और आ गया. हम खेल रहे थे विनर्स के साथ और हमने आपसे सवाल किया था. हमने पूछा था अंटिल 6th ऑफ सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ द टोस्ले सीफा मशीन में पूर्व 3 kg. और यहाँ पर सही जवाब है नॉर्मल प्राइस इज 225 rupees, प्रमोशनल प्राइस इज 149 rupees 95 cents. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विनर कौन है, तो चलिए जानते हैं कौन है. यहाँ पर सही जवाब देकर लकी ड्रॉ के बाद विनर बने हैं रवि बुद्धू फ्रॉम यूनियन पार्क. कंग्रेचुलेशंस सही जवाब देने के लिए. एंड मैं आपको बता दूं कि आपको मिल रहा है विनर्स की तरफ से 500 rupees का एक गिफ्ट वाउचर जो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको थोड़ी देर में कॉल करेंगे विद मोर डिटेल्स. देखो मैं खुश रहने के लिए बहानों की जरूरत पड़ती है, वो सारे बहाने हमारे पास है. एक तो आज मंडे है, ऊपर से मौसम कमाल का है, ऊपर से गाने वाह.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: चलिए जी, अब हमारे उनसे मिलने का समय हो गया है जिनका इंतजार किया जा रहा था. हेलो, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग राति, कैसे हो आप? राति
3: ठीक हूँ.
2: क्या कर रही
3: आप
2: थी?
3: कैसी है?
2: मैं ठीक हूँ. कौन बात कर रही है आपके साथ? पता चल गया?
3: पता चल गया. मैं रोज
2: मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मैं कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन पता चल जाता है. सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार. और राती, आज का दिन आपके लिए बहुत खास है मैं जानती हूँ. वैसे भौजी याशना ने आपको सरप्राइज करना चाहा है और उनकी तरफ से

0: रेडियो मस्ती।
1: ऑलराइट, सो आज आपका बहुत खास दिन है एंड आपकी भौजी लिखा है यहाँ पे, भौजी। तो आपकी भाभी ने आपको बहुत सारा प्यार भेजा है एंड साथ ही साथ आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। वैसे मुझे लगता है कि बहुत स्पेशल, बहुत खास जगह रखती है आप उनके दिल में, है ना? तो आप उनको कुछ
2: रहती है।
1: अच्छा जी, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी आप? मेरे ख्याल से तो वो सुन रही होगी आपको।
2: थैंक यू सो मच
1: यशना। ऑलराइट, सो प्लान क्या है आज का, क्या करने का मन है आज?
2: शाम को पार्टी है।
1: शाम को पार्टी? यार आपने हमें बुलाया तक नहीं। हाँ? हम आ जाए अपनी टीम के साथ।

0: आप तो घबरा गई। नहीं भाई, रहने दो, आप एंजॉय करो अपनी पूरी फैमिली के साथ, और बहुत खास होता है किसी का बर्थडे, सो एंजॉय योरसेल्फ। एंड मैं आपको बताऊं कि आपको मिल रहा है एक वाउचर, और वो वाउचर जो है आपको आज नहीं तो कल अपने आईडी कार्ड के साथ आकर एमबीसी कलेक्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, यू हैव टू डेज, आज नहीं तो कल, लेकिन अपने आईडी कार्ड के साथ। हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट आपको थोड़ी देर में सारी डिटेल्स देने वाली हैं, और हम आपको यही कहेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, एंजॉय कीजिए, और हमारे साथ हो सके तो अगले गाने के साथ डांस जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: सर के सारे डैंड्रफ निकाल दिए होंगे तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ना है तो क्या करना है, चलो भाई चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ स्पोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: तो सर्दी के इस मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ चलिए मुड़ते हमारे दोस्त अरविंद से जानते हैं कि वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या लेटेस्ट खबरें लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस के हैट्रिक पर द रेड डेविल्स 5-2 से इपस्विच टाउन को हरा पाए। एक ऑन गोल रहा और एक एम्बुमो का। ओल्ड ट्राफिड में गोलों की बरसात, टोटल 7 गोल। वैसे मैच के अंत में सच में मैनचेस्टर शहर में जोरदार बारिश के साथ बादल गरजा, बिजली चमकी। एक संकेत, एक मेटाफर कि ये ऐलान है मैनचेस्टर यूनाइटेड में नए युग की शुरुआत। इसके पीछे कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस आर्किटेक्ट बना। दिसंबर 2024 से पहली बार मार्कस राशफोर्ड को शुरू से खेलने का मौका दिया गया। कोबी माइनू भी था। ओल्ड ट्राफिड में 7 गोल। तो चेल्सी के स्टैमफोर्ड ब्रिज में भी यही कहानी। चेल्सी 4 ब्राइटन 3। 7 गोल थ्रिलर रहा। जावी अलोंजो की टीम 32वें मिनट में 3-0 से आगे थी। लाविया, नेटो और पेड्रो ऑन टारगेट। फिर फर्स्ट हाफ में ही ब्राइटन ने एक गोल किया, यालकुए का गोल। सेकंड हाफ में पेड्रो का ओन गोल, स्कोर 3-2। फिर पाल्मा का गोल 4-2। इंजुरी टाइम में पास्कल ग्रॉस ने ब्राइटन का तीसरा गोल स्कोर किया। फाइनल स्कोर चेल्सी 4 ब्राइटन 3। पहले मैच में 3-2 की जीत, कल 4-3। चेल्सी का अटैकिंग फुटबॉल बढ़िया है पर डिफेंस में छेद है। 5 गोल खा चुके हैं। कल मार्टिनेज गोलकीपर था, फिर भी 3 गोल कंसीड किया। जावी अलोंजो की दूसरी जीत पर टाइटल चैलेंज के लिए रक्षा पंक्ति डिफेंस को संभालना होगा, डिफेंस की समस्या को सुलझाना होगा, फिक्स करना होगा। अन्य मैचों में कल लीड्स और ब्रेडफोर्ड के बीच मैच ड्रॉ, 1-1। सनडलैंड ने फुलहाम को 1-0 से हराया। आज इस सप्ताह का आखिरी मैच एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। लिवरपूल वाले मैच में सब्स्टिट्यूशन टेबल में गड़बड़ तो था ही, चेल्सी के मैदान में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सेकेंड हाफ में माइकल ओलिवर और उसके बाकी असिस्टेंट और वार के बीच आपस में बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि माइक्रोफोन और रेडियो नहीं थे। 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ। माइकल ओलिवर को शायद वे दिन याद आ गए जब बिना टेक्नोलॉजी से काम होता था और होता था। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल रेंजर्स की जीत 1-0 से एबरडीन पर। डंडी 1 हिबेनियन 2, सेंट मिरन 3, मदरवेल 3। इंग्लैंड के लीग 1 में विंबलडन 1 विगन 0, मांसफील्ड 5 ल्यूटन टाउन 2। फ्रांस के लीग 1 में मोनाको ने मार्सेई को 2-0 से हराया। रेन 3 ले मान 2, पारी एफसी 3 निस 0। स्पेन के ला लीगा में रियल मैड्रिड की शानदार जीत 4-0 से मलागा को पछाड़ा। बेलिंगाम का एक गोल, एम्बापे का गोल, गुलर ने भी स्कोर किया और एक ऑन गोल। डेपोर्टिवो 3 वेलेंशिया 1, सेल्टा वीगो 0 एथलेटिक क्लब 2। जर्मनी के बुंडेसलीगा में फ्रीबर्ग 4 वेडर ब्रेमेन 1, ओसबर्ग 3 शाल्के 04-0। इटली के सेरी आ में नापोली की हार, होम मैदान में कोमो ने उसे 2-1 से हराया। इंटर मिलान की भी जीत हुई एवे मैदान में 1-0 से कागलियारी के खिलाफ। लाजियो 1 जिनोवा 0। लियोनेल मेसी का चौका, 4 गोल स्कोर कर पाया। उसकी इंटर मियामी ने मोरियल को 7-1 से

0: पीटा। कासेमिरो का भी एक गोल रहा, सुआरेज भी स्कोर कर पाया इस मैच में। ट्रांसफर न्यूज, ब्राडली बाकोला के बारे में कुछ खास खबर है नहीं, गायब है। 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफर फी पर मंजूरी हो चुकी है पर हाजिरी अभी तक नहीं दी है। कल ट्रांसफर बाजार में कारोबार बंद हो जाएगा। आर्सेनल का ब्राजीलियन स्ट्राइकर गैब्रियल जेसस 8.5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर बार्सिलोना में जाने वाला है। आर्सेनल से एक और गैब्रियल जा रहा है, गैब्रियल मार्टिनेली अल हिलाल की ओर। उसके लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से अधिक मिल सकती है। आर्सेनल में अब बचा है केवल एक गैब्रियल, गैब्रियल मगालहाइस। अंडर 18 अकादमी में आर्टेटा का बेटा गैब्रियल आर्टेटा भी है। टोटनहम हॉटस्पर अभी तक नए खिलाड़ियों पर 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च कर चुका है पर खरीदारी समाप्त नहीं हुई। अब एवर्टन से लिमन एंजाई पर नजर है, बदले में रिचार्लिसन एवर्टन में वापस जा रहा है। क्रिकेट, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने आसानी से पाकिस्तान को हराया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान केवल 194 पर सिमट गई, 194 रनों से इंग्लैंड की जीत हुई। विमेंस टी20 एशिया कप के अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने थाईलैंड को 94 रनों से हराया, 94 रन विन, 9 विकेट खोकर भारतीय टीम 159 रन बना पाई। शिफाली वर्मा टॉप स्कोरर रही 64 रनों के साथ, फिर थाईलैंड की टीम को केवल 65 रन पर ऑल आउट किया। टेनिस, यूएस ओपन में आज अरीना सबालेंका और कामिला ओजोरियो के बीच मैच है। कार्लोस अल्काराज खेलेगा रोमन साफ्यूलिन के खिलाफ। इसी समय नोवाक जोकोविच का मुकाबला मारियानो नावोरी से हो रहा है। लोकल स्पोर्ट्स, एमएफए चैलेंज कप जीत गया लाक्यू वेव्स एससी को 2 में। लाक्यू वेव्स ने आईएसपीएल देमिल और दुदु अंडर 20 को हराकर टूर्नामेंट जीता। अब इस 6 सितंबर को कुछ 2 में ही लाक्यू वेव्स लोहा लेगा दक्षिण अफ्रीका की चैंपियन टीम ओलांदो पायरेट्स से। वोश्नोई स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। कल सतानी कोश्तिया की जीत हुई 3-0 से ओलंपिक भामस्तान के खिलाफ। कालबास में विलेज काउंसिल टूर्नामेंट के फाइनल में कोयराची एससी ने 4-1 से लिस्पोर एससी को हराया। चैंपियन टीम के गोल स्कोरर रहे उदय राजपाल सिंह, आदेश सूरत सिंह और अनूप होमू। लिस्पोर का गोल प्रवेश जहाली का रहा। क्रिकेट में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा टूर्नामेंट में कल वन हेल्थ जागोस की जीत हुई 3 विकेट से एएपी लियोपार्ड्स पर। फिर टोमास कुक टाइगर्स की जीत कॉन्टिनेंटल चीताज के खिलाफ। याद दिला दें, ग्रैंड फाइनल अगले 13 सितंबर को एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स में। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नए युग, न्यू एरा की बात हो रही है पर दिल्ली अभी दूर है। एक बार जीतकर ज्यादा फरफराना ठीक नहीं होता पर ड्रॉ से बेहतर, हार से बेहतर है जीत। 3rd अंक खाते में, कहते ना जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यही जीतते रहो और हमारा साथ देते रहिए। कीप ऑन लिसनिंग रेडियो मस्ती। आई विल कैच यू वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, अभी मिलते हैं ना थोड़ी देर में आपके साथ।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, अभी आपको एक बार फिर खुश करने का टाइम आ गया है. सवाल हम करेंगे, जवाब आप दोगे. एंड चलिए, यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सवाल. लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर शान, जितने भी लोग शान को पसंद करते हैं, वो आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे म्यूज़िकल जर्नी में, जहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी यादें, मेमोरीज, टाइमलेस वॉइस ऑफ शान, जो लाइव हमारे लिए लेकर आ रहे हैं. तो बस One stage, one voice, one unforgettable night at SVICC at Pi. बिल्कुल 5 सितंबर को होने वाला है. As from 8 p.m. organized by Ticketbox.mu. So yes, the game is powered by Ticketbox.mu. और आपके लिए मौका है कि आप शान की आवाज़ में ये जो कॉन्सर्ट है

0: हैं इसको एंजॉय कर सके. तो चलिए यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल. यू हैव टू टेल मी वेयर कैन यू बुक फ्लाइट्स टू थ्रू ticketbox.mu. ओके, वेयर कैन यू बुक फ्लाइट्स टू थ्रू ticketbox.mu. इज इट ए रोड्रिक्स एंड रनियन आइलैंड, इज इट बी इंडिया ओनली, इज इट सी डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड. 549-1294 पे वेट करें आपके सही जवाब का.
1: RM2 Radio Musti Shan live in Mauritius Saturday 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Shan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
2: Tech Mag, powered by 365. Bien plus encore.
3: When a satellite develops a problem in space, sending a technician to fix it is obviously not an option. And the further our missions travel from Earth, the more complicated communication becomes. That's why one important area of space technology is making satellites capable of taking more decisions for themselves. The idea is to allow a spacecraft to monitor its own systems, detect something unusual, and in some situations respond before engineers on Earth can intervene. This could particularly be useful for small satellites or more distant missions where communication with Earth may be intermittent. A satellite could potentially detect a malfunction, isolate a faulty system, or adjust how it operates while waiting to reconnect with ground control. The farther we send machines from Earth, the less practical it becomes for them to wait for us to tell them what to do.
2: Tech Mag was powered by 365.
1: Bien plus encore.
4: Moments that matter with Seacom.
5: सबसे जोली परियोजना अक्सर शुरू होएला एगो निर्णय से. नवा गाड़ी लेके अपन कारोबार के आगे बढ़ाए के, अपन भविष्य के मजबूत बनाए के, या फिर आज ऐसा जीवन चुने के जोन पर्यावरण यानी लॉन्विहोन खातिर बेहतर हो. सिकोम तुहर सब परियोजना के आगे बढ़ाई में साथ दिवेला. हमने दिने से देवल जाए होला होम लोन आर लीसिंग के कई गो उपसियों बा जोन तोहरा पर्यावरण यानी लॉन्विहोन मो पर कमती असर डाले में तोहरा प्रोत्साहित करेला, जेकर से आई होला पीढ़ी खातिर भी एगो निमन आर बेहतर काल बनाए सकबा. हमने के वित्तीय समाधान तोहर सपना, तोहर जीवन के सब फैसला आर उस सब पल में तोहर संगी बा जोन तोहर खातिर सबसे जस्ती मायना रखेला. सिकोम एगो ऐसन साथी है जिकर लगे हर जरूरत के समाधान है. इमे नियम आ शर्त भी लागू बा. सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला.
4: It was moments that matter with Seacom.
1: RM2 Radio Musti
6: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

एंड यस दोस्तों, हमने आपसे सवाल किया था और यहाँ पर हमें जवाब मिल गया है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर आपके लिए जो गेम लेकर आए हैं, हमने आपसे पूछा था वेयर कैन यू बुक फ्लाइट्स टू थ्रू ticketbox.mu एंड द राइट आंसर इज सी डेस्टिनेशंस अराउंड द वर्ल्ड। यस दैट्स द राइट आंसर। और यहाँ पर हमें सही जवाब देकर विनर कौन बने हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। सो यहाँ पर नाम आया है आप का विजय लक्ष्मी बुबन फ्रॉम कौदमास पावे। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है एक टिकट। जी हाँ, ये है आपके लिए शान का जो कॉन्सर्ट है वहाँ पर जाने का मौका। सो आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। ये VIP टिकट आपको मिल रहा है जो आपको आकर MBC कलेक्ट करना पड़ेगा अपने ID कार्ड के साथ। जी हाँ, यू हैव टू ब्रिंग अलॉन्ग योर ID कार्ड। और चलिए आपको ये जो टिकट है इसके चलते आप शान का कॉन्सर्ट जो है वो आप जाकर एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी ऑन द 5th of September as from 8 PM प्राउडली ऑर्गेनाइज बाई ticketbox.mu। तो आप एंजॉय कीजिएगा। शान is one of India's most beloved playback singers और उनकी जितने भी गाने हैं 90s के स्पेशली बहुत कमाल के हैं। यू गन लव इट। एंड ओवर द ईयर्स शान ने इतने सारे मेमोरेबल हिट्स दिए हैं हिंदी सिनेमा एंड इंडियन पॉप म्यूजिक, अर्निंग अ स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशन। तो चलिए इसी के साथ हम थोड़ी देर में बढ़ने जा रहे हैं भोजपुरी समाचारों की ओर। मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। डोंट फॉरगेट यू कैन कम टू MBC विद योर ID कार्ड सुबह 9:30 के 3:30 के बीच अपना ये कार्ड यानी कि अपना ये टिकट कलेक्ट करने के लिए।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
5: सुबह के 8 बजे हैं। नमस्ते, पेश है भोजपुरी के समाचार। गल आधिकारिक गणना 2013 में हो रहा, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ता दर्ज करल गल हल। तब से ई संख्या में कौन बदलाव आनल बाटे, एकरा लेके कोनो सटीक जानकारी नहीं उपलब्ध बा।

0: हालांकि इस क्षेत्र में काम करे होला गैर सरकारी संगठन लोग और परोपकारी लोग के ई मानना है कि इस संख्या जरूर बढ़ल बा। अब एम्सो हाली ई सब जानवर के नवा गिनती शुरू करे चाहता। पहली नियन रास्ता पर ही चल के यार पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे के बजाय अब ई कार्यवाही खातिर नवा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो। एम्सो देने से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्ता लोग की गिनती करल जाए। ई सेवा खातिर मार्केट रिसर्च के एगो टेंडर गल फरवरी महीना में जारी करल गल रहल। ई एगो ऐसा माध्यम है जेकर इस्तेमाल शायद ही कहूँ पर ही होल बाटे। जे ये अभियान सफल हो जाए तो मॉरिशस निश्चित रूप से एकरा लागू करे होला दुनिया के प्रथम देश बन जाए। मॉरिशस में ईंधन की कीमत निर्धारित करे खातिर प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभावेला। इस सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दाम के उतार चढ़ाव के असर कमती करे खातिर मदद करेला। हालांकि भारी घाटा के कारण इस स्थिति पब्लिक फाइनेंस खातिर चिंता के विषय बनता। अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी के ई मानना है कि लंबा अवधि के संतुलन खातिर व्यावहारिक उपाय अपनावल जाए के चाहेला। समय के संगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सब क्षेत्र में अपन महत्वपूर्ण पहचान बनावता। हालांकि एकर से पैदा होए होला संभावना के अलावा एकरा नियमबद्ध करे के मुद्दा पर भी अहम विचार करल जाता। इस सब चुनौती के सामना करे खातिर अफ्रीकी देश के तैयारी के स्तर जाने खातिर हाल में अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स नाम के एगो नवा टूल के लॉन्चिंग करल गल है। एकर जिम्मेदारी होई अफ्रीकी महाद्वीप पर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास की बढ़ावा देवे खातिर नवा नीति संस्थान आर मेकानिज्म के मूल्यांकन करेगी। स्थानीय अभिनेता लोग अभिनेत्री लोग उभरल स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन आदमी लोग खातिर ई अच्छा खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हाल ही मॉरिशन प्रतिभा के तलाशे खातिर एगो प्रतियोगिता शुरू करता। देश में फिल्म उद्योग की नवा गति देवे के मकसद से ई परियोजना के अंतर्गत एगो मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकादमी के निर्माण करल जाए जेकर में एगो स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी शामिल है। अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि में मदद करे खातिर जनता की भविष्य की आवश्यकता की बेहतर ढंग से पूरा करे खातिर मूल ढांचा पर फिर से गौर करल जाता। ई दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में 20 से 25 अगस्त के बीच आयोजित सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोशियम 2026 में चर्चा पर रहे होला मुख्य मुद्दा में शामिल रहल। मॉरिशस के सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ई सम्मेलन में मॉरिशस के प्रतिनिधित्व करलनि कर में अफ्रीकी महाद्वीप में मूल ढांचा विकास से जुड़ल विभिन्न साझेदार लोग एकत्र होलन जा। दूसरा देश की खबर में नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थल के कई गो सुरंग में फसल सैकड़ों जना के बचावे के प्रयास तेज करल जाता। ऐसा आशंका है कि ये आपदा में लापता होल 2500 जस्ती जना इस सब सुरंग में काम करे होला कर्मचारी लोग हवन जा। बचाव टीम में भारत और चीन के विशेषज्ञ लोग शामिल हवन जा। गल एकाध दिन से अंदर फसल आदमी लोग के संगे संपर्क करे की कोशिश करल जाता बकीर हबीले कुछ हासिल नहीं होल बाटे। गल बुध के अचानक उतरल विनाशकारी बाढ़ में मरे होला लोग की संख्या 794 ले पहुंच गल बाटे। उधर उत्तरी साइप्रस के समंदर में गो यात्री जहाज के उलझला से कम 8 जना की मौत होल बा दर्जनों लापता होल हवन जा। रहल भोजपुरी की समाचार तो हर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat.
2: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: सर्दी के इस मौसम में, बारिश के इस मौसम में मन तो यही कर रहा है कि हाथ में गरम गरम कॉफी लेकर सच में हम कहीं दूर निकल आए. इसीलिए तो आप पहुंच गए हैं हमारे पास ऑन रेडियो मस्ती.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग इन टू रेडियो मस्ती. मैं हूँ विदिता और चलिए यहाँ पर हम सिद्ध को वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. और जितने भी बच्चे इसमें स्कूल जा रहे हैं उनको कहेंगे स्माइल. एंड प्लीज़ जो पेरेंट्स हैं उनको यही कहेंगे कि बच्चों के बैग में उनका छाता, उनका रेनकोट मत भूलिएगा. बाहर वेदर थोड़ा क्लाउडी, थोड़ा ब्रीदी और बारिश का मूड बना हुआ है. और ऑनेस्टली रेनी मॉर्निंग्स का अपना ही एक चार्म होता है. अगर आप लकी इनफ हो, हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं अभी घर के काम काज में लग जाएंगी, अरे एक कप कॉफ़ी, एक कप चाय ले लो और अपने विंडो के पास बैठो, बारिश की बूंदों को देखो, थोड़ा सा ये जो कोल्ड वेदर है इसको थोड़ा फील करो. जो लोग बाहर जा रहे हैं प्लीज़ रेनकोट पहन के निकलना, छाता लेकर जाना. और डोंट वरी विदिता, आपके पास, आपके साथ, आपके दिल में, आपकी गाड़ी में, मैं तो हर जगह पहुंच जाती हूं आपके साथ अपने बेस्ट ऑफ मिक्स ऑफ म्यूजिक के साथ. तो जैसा मैंने कहा कि रोड्स अभी थोड़ी गिली गिली सी हैं, तो ड्राइव करते वक्त थोड़ा स्लो, थोड़ा सेफ जाना. और अगर बारिश आपका मूड थोड़ा स्लीपी बना रहा है तो टेंशन लेने का ना देने का, विदिता है, म्यूजिक साथ में है. और हाँ, आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये जानने के लिए अदिति से मिलते हैं.
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
2: ओनली टू विनर्स.
3: आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी है जो आज दिन की 10 बजे तक बरकरार रखी जाएगी. मास्कारेंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जोरदार

0: एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, खासकर देश के पूर्वी, दक्षिणी और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं और रह रहकर बारिश होती रहेगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है। ऊंची जगहों पर न जाएं और खासकर गाड़ी चलाते हुए सड़कों पर क्रॉसविंड वाली जगहों पर खास सावधानियां बरतें। प्रवालिका के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी और इनका असर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों तथा तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से इन इलाकों में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:19 पर सूर्योदय, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: La foire Bilbil Kadi retourne Côte Winners.
4: Bilbil Kadi de retour Côte Winners. Du 26 août au 6 septembre uniquement. Le riz basmati superstar de 5 kg à 296,95 roupies. Et du lundi 31 août au mercredi 2 septembre, le dentifrice Colgate triple action de 100 ml à 42,95 roupies. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
5: On est tous winners.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब प्रोजेक्ट के बिना कोनो चिंता के पूरा करें। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: मैं हमेशा एक गाना गाती हूँ कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते चलते चलते चलते पैरों से चलते चलते गाड़ी में नहीं पैरों से चलते चलते याद आता है कि अरे मम्मी मैं तो कुछ भूल गई। कभी कभी लोग चार्ज पे मोबाइल भूल जाते हैं, कभी कभी लोग अपना टिफिन भूल जाते हैं, फिर मम्मी चिल्लाती रहती हैं, ताने मारती रहती हैं, ऐसा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि आज मंडे है ना, मन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। टुडे वी आर मंडे 31st ऑगस्ट। चलो अगस्त को बाय बाय टाटा कहने का टाइम भी आ गया है और आज का दिन इतना बरसाती है, आज तो मौसम भी रो रहा है। चलो कोई नहीं, रोने नहीं देंगे उनको, नहीं हम आपको रोने देंगे। वैसे हम कभी कभी बारिश के मौसम को बहुत ताना मारते हैं कि हाँ इसको अभी आना था, मम्मी कहती है कपड़े सुखाने थे, उनका कहना कि बाहर जाना था। देखो बारिश है, जब बरसना होता है तो बारिश का मज़ा तो लेना चाहिए। अब देखो आप लोग गाड़ी में बैठे हो, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि हाँ तुझे पता है मुझे ये करना था मुझे वो, जबकि वो लोग इस बारिश का मजा लेते हो हमारे गीतों को गुनगुनाते चले। लेकिन दो लड़कियां हैं यहां पर जो गानों को एंजॉय कर रही हैं और इस बरसाती मौसम का मजा ले रहे हैं, भले वो ट्रैफिक में फंसी हैं। कहते हैं कि अभी पोंफे फिनिक्स जो है टू इबेन आई मीन साइबर सिटी, यहां पर वो ट्रैफिक में फंसे हैं, लेकिन जो गाने चल रहे हैं उसका मजा लेते लेते गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। तो कुछ इनसे सीखो और अपने टेंशन को बाहर फेंक दो खिड़की से। देखो किसी के दूसरे की खिड़की खुली होगी तो उनकी गाड़ी मत फेंक देना, ठीक है? अपना टेंशन अपने पास रखो। अभी क्या है ना कि जब बारिश होती है तो चेक करना पड़ता है कि चलो देख लो, रेनकोट चेक, अम्ब्रेला चेक, एक जोड़ा कपड़ा चेक, पेशेंस को डबल चेक करना पड़ता है। आई नो इट्स नॉट ईजी, लेकिन फिर भी आप लोग अगर कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं, प्लीज़ लेट मी नो 1549 एंड 1294 कि कहाँ पे ट्रैफिक है, ताकि

हम अपने बाकी दोस्तों को इन्फॉर्म कर सके. एंड ये भी है कि मुझे साउथ में भी मुझे नोटिस हुआ है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद ट्रैफिक में फंसे. अगर कुछ है उधर प्लीज़ लेट मी नो 5491294 पर. बाकी जो लोग ड्राइव कर रहे हैं यार मूड थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. अभी गाने का जो प्लेलिस्ट है ना ये इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. देखो सोना मत, एंजॉय करना, बारिश को एंजॉय करना. And we have this beautiful song in the voice of Shaan and Alka Yagnik. प्यार से सीधे आपके दिल तक. Here we go on Radio Masti. आप सुन रहे हैं Morning Beat Pirita के साथ.

0: एंड आई जस्ट होप यू आर सिंगिंग अलोंग विद मी. वेदिता आपके अपने रेडियो मस्ती पर लेकर आए हैं मॉर्निंग बीट. सुबह के 8:32 हुई हैं एंड आई कैन सी योर स्माइल. ऑफ कोर्स यहां पर चलिए बातें हो रही थी कि रोड पे आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो मैं आपको बता दूँ अभी हमारी बात हो गई है ट्रैफिक ब्रांच से और कॉन्स्टेबल बताड़ी ने हमें बताया कि नो एक्सीडेंट नो इंसिडेंट की रिपोर्ट है, लेकिन आज मंडे हैं और बारिश की वजह से गाड़ियाँ थोड़ी धीरे धीरे चल रही हैं. स्लोली बट श्योरली मंजिल तक पहुंच जाओगे, नो रश. चलिए इसी के साथ, अगर आप लोगों ने हमारा 7:30 का स्पोर्ट्स मिस कर दिया तो इट्स हाई टाइम हम फिर से मिले हमारे दोस्त अरविंद के साथ.
1: स्पोर्ट्स न्यूज रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: तो चलिए अरविंद का वेलकम करते हैं वंस अगेन. अ वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद.
2: गुड मॉर्निंग अगेन. क्विक रिकैप स्पोर्ट्स अपडेट को लेकर, सो मैनचेस्टर यूनाइटेड 5 इप्सविच 2, कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस का हैट्रिक, द रेड डेविल्स इप्सविच टाउन को हरा पाए 5-2 के स्कोर पर. मॉरिशस में भी बारिश, ओल्ड ट्राफर्ड में भी गोलों की बरसात और मैनचेस्टर यूनाइटेड में कहा जा रहा है द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, खासतौर पर कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस के परफॉर्मेंस को लेकर. उल्लेखनीय है दिसंबर 2024 से पहली बार मार्कस राशफोर्ड को शुरू से खेलने का मौका दिया गया, कोबी माइनू को भी भेजा गया. सो ओल्ड ट्राफर्ड में 7 गोल्स और चेल्सी के स्टैमफोर्ड ब्रिज में भी 7 गोल, चेल्सी 4 ब्राइटन 3, 7 गोल थ्रिलर कहा जा रहा है. ज़ाबी अलोंसो की टीम 32वें मिनट में 3-0 से आगे थी, लाविया नीटो और पेड्रो अंटागेट. फिर फर्स्ट हाफ में ही ब्राइटन ने एक गोल कम किया, यालकुए का गोल. सेकेंड हाफ में पेड्रो का ओन गोल स्कोर 3-2, फिर पाल्मर का गोल 4-2. इंजरी टाइम में पास्कल ग्रॉस ने ब्राइटन का तीसरा गोल स्कोर किया. वैसे चेल्सी का अटैकिंग फुटबॉल बढ़िया है पर डिफेंस में छेद है, उसे ठीक करना होगा. अन्य दो मैचों में लीड्स 1 ब्रेडफोर्ड 1 सनडरलैंड 1 फुलहम 0. आज एस्टन विला आर्सेनल का स्वागत करेगा. इधर स्कॉटिश प्रीमियरशिप में कल रेंजर्स हिबेनियन की जीत, सेंट मिरन मदरवेल के बीच मैच ड्रॉ. इंग्लैंड के लीग वन में विंबलडन जीत पाया, मैन्सफील्ड ने लूटन टाउन को 5-2 से लूटा. स्पेन के लालीगा में इजी विन रियल मैड्रिड के लिए मलागा पर, बेलिंगाम एम्बापे गुलह और एक ओन गोल, डेपोर्टिवो और एथलेटिक क्लब भी जीत पाए. जर्मनी में फ्रीबर्ग और ओसबर्ग जीत पाए. इटली में नापोली की हार, कोमो ने उसे 2-1 से हराया. इंटर मिलान और लाजियो भी जीत पाए. फ्रांस के लीगों में मार्सेय की हार, मोनाको ने उसे 2-0 से हराया. रेन और पारी एफ से भी जीत पाए. उधर अमेरिका में लियोनेल मेसी का चौका 4 गोल्स स्कोर कर पाया, उसकी इंटर मियामी टीम ने मोरियाल को 7-1 से पीटा. कैसेमिरो का एक गोल रहा, सुआरेज का भी एक गोल. फ्रांस न्यूज, ब्रैडले बाकोला के बारे में कुछ खास खबर नहीं है. 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफर फी पर मंजूरी हो चुकी है पर हाजिरी अभी तक बाकी है, कल ट्रांसफर बाजार में कारोबार बंद हो जाएगा. इधर आर्सेनल का ब्राजीलियन स्ट्राइकर गैब्रियल जेसस बार्सिलोना की ओर, जबकि गैब्रियल मार्टिनेली अल हिलाल की ओर जा रहा है. और टोटनहम हॉटस्पर में खरीदारी जारी है, अभी एवर्टन से लिलमान एंजाय को खरीदा जा रहा है. क्रिकेट, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने आसानी से पाकिस्तान को हराया. दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान केवल 194 रन पर सिमट गई, 194 रनों से इंग्लैंड की जीत. वीमेन T20 एशिया कप में अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने थाईलैंड को 94 रनों से हराया. 9 विकेट खोकर भारतीय टीम 159 रन बना पाई. शिफाली वर्मा टॉप स्कोरर रही 64 रन. फिर थाईलैंड की टीम को केवल 65 रनों पर ऑल आउट किया. टेनिस यूएस ओपन में आज नवोने ने नोवाक जोकोविच को हराया और अरीना सबालेंका खेलेगी कमिला ओसोरियो के खिलाफ. कॉलो

0: अल्काराज की एंट्री होगी रोमान सफ्यूलिन के खिलाफ। लोकल स्पोर्ट्स में एमएफए चैलेंज कप में लाक्यू वेव्स की जीत हुई कुद्दो में। अब उसका अगला मैच 6 सितंबर को होगा लाक्यू वेव्स वर्सेस दक्षिण अफ्रीका की चैंपियन टीम ओलांडो पायरेट्स। रीजनल लेवल में रोस्टनो स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल सतानिक रोस्टिया की जीत। कालबास में विलेज काउंसिल टूर्नामेंट के फाइनल में कोइराची एससी की जीत 4-1 से लिस्बोन टीम पर। और मॉरिशस में क्रिकेट आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा टूर्नामेंट में कल वन हेल्थ जगुआर्स की जीत हुई 3 विकेट से एएपी लियोपॉड्स पर। फिर टोमास कुक टाइगर्स की जीत कॉन्टिनेंटल चीतास के खिलाफ। याद दिला दें द ग्रैंड फाइनल शेड्यूल फॉर 13 सितंबर को एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड में नए युग न्यू एरा की बात चल रही है, पर जिसे सुबह कहा था दिल्ली अभी दूर है। एक मैच जीतकर ज्यादा फरफराने की जरूरत नहीं होती, अभी पिक्चर बाकी है। पर हाँ ये तो है, एक ड्रॉ से बेहतर जीत है, हार से बेहतर जीत तो है ही। कहते ना वही जिंदगी की वही रीत है, हार के बाद जीत है। जीतते रहो, खुश रहो और सबको खुश करते रहो, जैसे अभी रेडियो मस्ती में हो रहा है। हैव अ वंडरफुल वीक अहेड, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच। और आप भी खुश रहो, मुस्कुराते रहो और जहां भी जाओ धूम मचाते रहो।
2: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम हमेशा टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। किसी को इतना भी फॉर ग्रांटेड मत लो कि उनकी प्रेजेंस की वैल्यू तब समझो जब वो आपकी लाइफ में ना रहें। कभी कभी हम उन लोगों को सबसे ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जो बिना बोले हमारा मूड समझ लेते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, जो हमारे बुरे दिन में हमारे साथ खड़े होते हैं। और क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हम अश्यूम कर लेते हैं कि ये तो हमेशा रहेंगे, है ना। पर लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इसलिए आज एक मिनट निकालो और उन लोगों को अप्रिशिएट करो जो आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। एक सिंपल थैंक यू, एक सिंपल आई अप्रिशिएट यू, एक सिंपल सॉरी अगर कोई रूठ गया, या एक जेन्युइन कॉल भी किसी के दिन को ब्यूटीफुल बना सकता है। लोगों को उनकी वैल्यू तब मत बताओ जब वो दूर चले जाएं, उन्हें आज बताओ, अभी बताओ जब वो आपके पास है। क्योंकि कभी कभी लोग रोड कर इतने दूर निकल जाते हैं कि फिर उनको सॉरी बोलने तक का टाइम नहीं मिलता। सो डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें फील कराओ कि वो इम्पॉर्टेंट हैं, और फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े हैं बुरे वक्त में, क्या आपकी खुशी तो बांटेंगे लेकिन आपके दुख में भी वो हमेशा सबसे आगे खड़े रहेंगे।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: Morning Beat.
6: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: What a beautiful song, यार मूड सेट हो गया. और बरसात के मौसम में ऐसे गाने सुनकर लोग जो हैं थोड़ा उनकी जो मेमोरीज होती है ना वो रिफ्रेश हो जाती हैं. कुछ गाने होते हैं जो दिल के किसी कोने में ऐसे छुपे रहते हैं याद बनकर, और जैसे गाना आता है कानों में गूंजता है तो यादें भी उभर के आ जाती है. सो वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ विनीता विद यू और हम आपके साथ हैं, यानी कि लेकर आए हैं रेडियो मस्ती पर मॉर्निंग बीट. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम सेफ हैं, गाड़ी आराम से चलाना. देखो मैंने पहले बता दिया कि बारिश

0: की वजह से गाड़ियां थोड़ी धीरे धीरे चल रही हैं, सो प्लीज पेशेंस रखो और बस गुनगुनाते हुए अपने सफर को तय करो। इसी के साथ अभी हमारे पास कुछ और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसे सुनकर आपको मजा तो बहुत आने वाला है, एंड उनमें से एक और गाना है विशाल मिश्रा की आवाज में, एंड आई गेस ये गाना आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो नजरें इधर उधर तो घूमती रहती हैं, कभी कभी लगता है ना कि कैसे हुआ, किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया कि हमारे साथ स्माइल कर दिया, तो बगल में आसपास में लोग देखे थोड़े गुस्से में तो देखकर स्माइल जरूर करना। हाँ
1: हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल,
0: नहीं हंसना नहीं स्माइल देना है।

0: कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता है क्या?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: क्या हो गया, कैसे हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि कैसे हो गया कि मेरे जाने का टाइम हो गया, घड़ी नहीं देखी आपने? अरे भाई 8:56 हो गए हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू यू। एंड इसी के साथ हमारे बाद परी आ रही हैं लेकर आपके लिए मॉर्निंग मस्ती, और ढेर सारा मस्ती करेंगे हम उनके साथ। फिलहाल अभी के लिए तो मेरे जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, आई एम गोना कैच यू वेरी सून, यानी कि कल मॉर्निंग में 7:00। ख्याल रखिएगा अपना, आपको बस बहुत सारे प्यार के साथ छोड़े जा रही हूँ मैं।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे हैं।

0: गाड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुधिया संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। पिछले आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते दर्ज किए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या बढ़ी है। अब एम्सो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलने के बजाय अब इस कार्रवाई के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। एम्सो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और हुआ होगा। यदि ये अभियान सफल हुआ तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाला

0: दुनिया के प्रथम देशों में शामिल होगा। मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने में प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है। हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अर्थशास्त्री मनीष अदुकोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का भी मुद्दा अहम बन रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के लिए हाल में अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी साइप्रस के समंदर में यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोप पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, मस्ती वाली मॉर्निंग तो स्टार्ट हो चुकी है. वैसे सुबह 5 बजे से ही तो यहां पर मस्ती होना शुरू हो जाता है और आप भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं. सो वंस अगेन वार्म वेलकम सुबह के 9:07 आफ्टर वेदिता. इट्स मी परी जो आपका साथ निभाएंगी. देखिए यहां पर स्टूडियो में मस्ती चलती रहती है एंड आफ्टर हर मॉर्निंग शो अब वेदिता इज ऑल सेट. जाकर वो कुछ गर्मा गर्म चाय कॉफी और ब्रेकफास्ट करेगी और हमारे लिए भी कुछ गर्मा गर्म नाश्ता यहां पर जरूर आने वाला है. तब तक के लिए हम आपकी मॉर्निंग को एकदम मस्ती से भरने वाले हैं बिकॉज दैट्स योर आरएम टू रेडियो मस्ती. मस्ती होगी, बातें होंगी, कुछ खास सेगमेंट्स होंगे आपके लिए. सो कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड एंड हैव अ वंडरफुल मंडे, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: एंड वेल फ्रेंड्स, बॉलीवुड का एक फेमस डायलॉग है कि एंड तक सब कुछ ठीक हो ही जाता है, और अगर सब कुछ ठीक ना हो तो इट्स नॉट द एंडिंग. यहाँ पर हम तो कहते हैं स्टार्टिंग हो या एंडिंग, लाइफ में सबकी सब कुछ अच्छा ही हो. गुड विशेस आप तक पहुंचा रही हैं एंड गुड म्यूजिक लेकर आए हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. गुड विशेस के साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस भी भर भर कर पहुंच रहे हैं ऑन अ मैजिकल नंबर जो है 5499122.

और हर किसी को उत्सुकता होती है कि भाई दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ होने वाला है, तो आई नो दैट आपका हॉरोस्कोप भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकर आएंगे आपका हॉरोस्कोप, आपकी राशियां थोड़ी ही देर में। दैट्स योर आरएम टू रेडियो मस्ती, मस्ती मॉर्निंग्स के साथ मैं हूं परी आपके साथ दिन के 12 बजे तक। तो चलिए ब्यूटीफुल सॉन्ग्स होंगे आपके लिए, आप भी साथ दे रहे हैं। सो नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस हैपनिंग 54991294 पर। थोड़ी ही देर में आपका हॉरोस्कोप, आपकी राशियां, कहीं मत जाइए, स्टे वेल कनेक्टेड।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: और चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां. शुरुआत करते हैं विद एरीज मेष राशि. आज का दिन आपके लिए उम्मीद और खुशियों की छोटी छोटी सौगात लेकर आ सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाही खबर मिल सकती है. टॉरस वृषभ राशि, मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी लेकिन आपकी सेहत आर्थिक स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी. पैसों से जुड़ी निजी बातें जो हैं उसे आप किसी और से शेयर ना करें. शेयर मार्केट में कदम बढ़ाने से आपको एक अच्छी खासी रकम हासिल हो सकती है. टॉरस वृषभ राशि, आज मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी और बस यही हम आपको बता रहे थे कि आज आप जो भी करेंगे उसमें पॉजिटिविटी रखें तो सब कुछ अच्छा ही होगा. आगे बढ़ते हैं विद जेमिनी मिथुन राशि. आज ऐसा लग सकता है कि मेहनत का परिणाम आखिरकार आपके सामने आ गया है. सफलता के संकेत मजबूत है और किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात होने से दिल काफी खुश रहेगा और थोड़ा सा इमोशनल भी फील कर सकते हैं. कैंसर कर्क राशि, आज कुछ मामलों में स्थिति थोड़ी उलझी हुई नजर आ सकती है, इसीलिए जल्दबाजी की बजाय समझदारी से आप आगे बढ़े. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो प्यार से बात करना बेहतर रहेगा. प्रॉपर्टी या लोन से जुड़े मामलों में आज पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिलेगा. लियो सिंह राशि, आर्थिक मोर्चे पर आज किस्मत आपका साथ देती नजर आएगी. लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. कारोबार में पार्टनर्स के साथ आप फ्यूचर की कोई प्लानिंग्स कर सकते हैं. वर्गो कन्या राशि, आज कोई बड़ा सपना सिर्फ सपना न रहकर उसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम बन सकता है. किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को गहरी संतुष्टि मिलेगी. यात्रा को फिलहाल टालना आपके लिए बेहतर रहेगा. लिब्रा तुला राशि, आज आपको अपनी सूझबूझ और सतर्कता दोनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा. कोई विरोधी आपकी राह में परेशानी खड़ा करने की कोशिश कर सकता है लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे. स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज परिवार और अपनी सेहत दोनों को नजरअंदाज ना करें. जीवन साथी के साथ छोटी सी नोकझोंक संभव है लेकिन बातचीत में प्यार बनाए रखेंगे तो बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी. सैजिटेरियस धनुराशि, आज आपका प्रभाव लोगों पर साफ दिखाई देगा और सम्मान भी बढ़ सकता है. घर में कोई शुभ या मांगलिक आयोजन खुशियों का माहौल बना सकता है. सरकारी कामों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आज मेहनत का फल मिलने से अधूरी इच्छाओं को पूरा आप कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली जो बॉस को काफी प्रभावित कर सकती है. समाज सेवा या किसी अच्छे काम में योगदान देने से आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ सकती है. एक्वेरियस कुंभ राशि, आज अवसर खुद आपके पास आते दिखाई दे सकते हैं. नया काम शुरू करने का विचार आगे चलकर लाभदायक साबित होगा. रिश्तेदारों के साथ छोटी मोटी बहस संभव है लेकिन परिवार के बड़े आपकी स्थिति समझकर आपका साथ देंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस मीन राशि, आज मन में चल रही किसी दुविधा के कारण निर्णय लेना यानी कि डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. कोई महत्वपूर्ण डील अंतिम समय में अटक जाए तो आप परेशान ना होइए, बस धैर्य यानी कि पेशेंस बनाए रखिए. कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों का व्यवहार थोड़ा तनाव बढ़ा सकता है लेकिन जल्द प्रतिक्रिया देने से बचे यानी कि रिएक्शंस देने से बचे. तो ये थी आज के लिए आपकी राशियां. विशिंग यू गुड लक एंड विशिंग यू अ वंडरफुल डे अहेड.
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: So, well, that's your Musty Mornings. वैसे तो हर मॉर्निंग मस्ती भरी होती है, लेकिन भागदौड़ भरी भी होती है. मंडे आते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है और फिर पूरा हफ्ता का टाइम कहाँ निकल जाता है.

पता ही नहीं चलता तभी तो हम कोशिश करते हैं कि म्यूजिक के जरिए आपके मूड को सेट रखें और जैसे हम हमेशा कहते हैं दैट म्यूजिक इज अ थेरेपी गुड म्यूजिक चलता रहे तो फिर लाइफ इतनी टफ कहां लगती है लगता है कि बस टाइम निकल रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक चलते जा रहा है आर एम टू रेडियो मस्ती कोशिश यही रहती है कि हमेशा आपका साथ हम निभाते रहें म्यूजिकली आपसे कनेक्टेड रहें सो यहां पर कुछ मैसेजेस डेडिकेशंस आपके भी आ गए हैं हमारे लिसनर्स जो हमेशा साथ देते हैं ऑन 5499 1294 कहते हैं रेडियो मस्ती टीम साथ दे रहे हैं हम भी और आप है कृष्णा क्या बात है हमारा साथ दे रहे हैं सो थैंक यू सो मच कृष्णा एंड थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज डेडिकेट करना चाहते हैं अगला गाना और ये होगा आपके पूरे परिवार के नाम स्पेशली गोज आउट फॉर विवेन जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे योर डियरेस्ट फ्रेंड उनके लिए आप भेज रहे हैं स्पेशल विशेज अमृता जी यहाँ पर आप भी साथ दे रहे हैं कट रोन से और कहती हैं आज टुक छुट्टी एंड एंजॉइंग द सॉन्ग्स घर पर वैसे आज मौसम भी ऐसा ही है जहाँ पर आप घर पर चिल करना पसंद करेंगे सो एंजॉय योर छुट्टी एंड वी ट्राई टू मेक इट स्पेशल विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स चंदा जी हमारा साथ दे रही हैं आप चंदा रे आ गई हैं आप हमारा साथ निभाने सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए डेडिकेट करेंगे और साथ ही गोज आउट फॉर योर हस्बैंड मिस्टर रवि उनके लिए भी आप स्पेशल विशेस भेज रही हैं और साथ ही फॉर ऑल द लिसनर्स डेडिकेटिंग अगला गाना तो चलिए दोस्तों थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर और दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स मैं हूँ आपके साथ टिल 12 और कुछ प्यारे गानों के साथ मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट आवर आफ्टर द समाचार आप भी साथ निभाते रहिए एंड नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499 1294 पर

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। स्थानीय अभिनेताओं अभिनेत्रियों भरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ये खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना के अंतर्गत एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट एकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी शामिल है। समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के वास्ते हाल ही में अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स नामक एक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है। इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए नई बनाई गई नई नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना। मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने में प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है। हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय बनाए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी साइप्रस के समंदर में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे। प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोपों पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्य

0: सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 99 लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में, लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की मिसेस हफीजा बीबी करिम्बोकस, मिसेस हफीजा बीबी करिम्बोकस जो गोरी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे, इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठा कर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टू डेट 1:30 PM। नेहरू रोड बेल्टेया फोनिक्स में, नेहरू रोड बेल्टेया फोनिक्स में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमृता रुकमीनिया, श्रीमती अमृता रुकमीनिया पैदाशी नाम रमादीन जो रेशमा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके पति श्री प्रवीण रुकमीनिया के मकान नेहरू रोड बेल्टेया फोनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 3 PM। कैंस कौतों नंबर 2 वाक्वामी, कैंस कौतों नंबर 2 वाक्वामी 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री बिहारी सिबोरत, श्री बिहारी सिबोरत जो राज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी माँ श्रीमती विद्यावंती मानती सिबोरत के मकान कैंस कौतों नंबर 2 वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोल्फेरिनो नंबर 5 वाक्वा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। शोक में रुबिन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

सुबह सुबह के 10:16 दैट्स योर मस्ती मॉर्निंग्स ऑन रेडियो मस्ती. आपका मूड सेट कर रहे हैं विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स. चलिए दोस्तों, इस आवर में भी कुछ खास सेगमेंट्स होने वाले हैं आपके लिए एंड गुड म्यूजिक कंटिन्यूज. योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर. अभी के लिए ये गाना आप सभी के नाम जो दे रहे हैं हमारा साथ ऑन रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: So, well, that was taken from the film Lucky, No Time for Love. Or yes, yahan par Sneha Ulal and Salman Khan ki beautiful chemistry hume dekhne ko mili. It's 10:31, dosto saath de rahe hain aap on RM2 Radio Musti. Main hu pari aapke saath aur aapka pyar, aapke messages, aapke dedications on 5499-1294. Jyoti ji, Shadow Banaras se humara saath de rahe hain, dedicating gana for Ashni, saath mein hai Rekha, Surekha, sabhi madhab parivar jo humara saath de rahe hain. So, good morning wishes. Agle gaane ke बबीता जी यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं, पोंकोलविल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कहते हैं नेक्स्ट गाना मेरे नाम. बिल्कुल जी, अगला गाना होगा आपके लिए. स्पेशल विशेज हमारी प्यारी सी आरती जी की ओर से और हम भी भेज रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार. हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड हमारी प्यारी सी आरती जी, एंड गुड विशेज एंड गुड हेल्थ टू यू.

साथ ही यहाँ पर जो अगला गाना है कहते हैं दैट एंजॉय कर रहे हैं गानों को अभी तो ट्यून इन किया है और आप इस वक्त कैसे देखिए कभी कभार हो जाते हैं ऐसे कह सकते हैं गुड गुड कोइंसिडेंसेस जहाँ पर आपसे मिलने का मौका हमें मिल जाता है वो भी इस टाइम गजब का है दिन ये गाना तो था बस आप

0: Actu.
1: Radio Musti.
0: Promotion Rak Chabandan côte magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, Lehenga, Kulta, Shelvani et Krob Moye Blanc. Tout à petit prix à partir les 22 août jusqu'à les 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 5807 5357.
2: सिकम के लोन्स आर लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब प्रोजेक्ट के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा इसे हमनी के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमनी की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमें नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
4: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती।

सो कनेक्टेड हैं आप आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ एंड एक और ब्यूटीफुल ट्रैक लेट्स अनवाइंड बॉलीवुड. ये गाना आप सभी के लिए जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इट्स 10:51. मैं हूं परी आपके साथ मस्ती मॉर्निंग्स में आपका साथ निभा रही हूं टिल 12 PM और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. तो बस खूबसूरत गानों के साथ आपकी मंडे मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है और मॉर्निंग से अब धीरे धीरे आफ्टरनून की ओर हम बढ़ रहे हैं. काम काज जारी है लेकिन हमारे गानों का ये कारवां भी जारी है. जारी रहेगा साथ, जारी रहेगा प्यार और आपका प्यार ऑन मैसेजेस 5499 1294.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, din ke 11 baje hain. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। पिछली आधिकारिक गणना 2013 में हुई थी, जब मॉरिशस में लगभग 3 लाख आवारा कुत्ते दर्ज किए गए थे। तब से इस संख्या में क्या बदलाव आया है, इसकी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और परोपकारियों का मानना है कि ये संख्या जरूर बढ़ी है। अब एमसो जल्द ही इन जानवरों की नई गिनती शुरू करने वाला है। पहले की तरह रास्तों पर चलकर और पारंपरिक ट्रांसेक्ट सर्वे के बजाय अब इस कार्रवाई के लिए नई टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल होगा। एमसो की तरफ से अब ड्रोन और थर्मल इमेजिंग के इस्तेमाल से आसमान से कुत्तों की गिनती की जाएगी। इन सेवाओं के लिए मार्केट रिसर्च का टेंडर पिछले फरवरी महीने में जारी किया गया था। ये एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल शायद ही कहीं और किया गया हो। यदि ये अभियान सफल हुआ तो मॉरिशस निश्चित रूप से इसे लागू करने वाले दुनिया के प्रथम देशों में से एक होगा। अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि में मदद करते हुए जनता की भविष्य की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मूल ढांचों पर फिर से गौर करना, ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में 20 से 25 अगस्त के बीच आयोजित सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिंपोजियम 2026 में चर्चा में रहे मुख्य मुद्दों में से एक रहा। मॉरिशस के सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गनीस ने इस सम्मेलन में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें अफ्रीकी महाद्वीप में मूल ढांचा विकास से जुड़े विभिन्न साझेदार एकत्र हुए थे। स्थानीय अभिनेताओं अभिनेत्रियों उभरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए यह अच्छी खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना के अंतर्गत एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, नेपाल में हाइड्रो पावर परियोजना स्थलों की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इस बीच और मारे गए लोगों की खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक इस आपदा में मरने वालों की संख्या 900 पार कर गई है और 4247 लोगों के अभी भी लापता होने की खबर है। भारत और चीन से कई विशेषज्ञ टीमें वहां पे मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से एक सुरंग में फंसे लोगों के साथ संपर्क करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हासिल

0: नहीं हो पाया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। कैंस कौतो नंबर दो वाकवामी, कैंस कौतो नंबर दो वाकवामी 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड श्री बिहारी सिबोरत, श्री बिहारी सिबोरत जो राज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है आज दिन के 12:30 बजे। इनकी अर्थ है आज दिन के 12:30 बजे। इनकी माँ श्रीमती विद्यावंती मानती सिबोरत के मकान कैंस कौतो नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सल्फेनियो नंबर 5 वाकवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट हाउ फॉस नून नेहरू रोड बेल्टिया फेनिक्स में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड श्रीमती अमृता रुक्मिनिया पैदाशी नाम रामादीन जो रेशमा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ थी आज दिन के 3 बजे। इनके पति श्री प्रवीण रुक्मिनिया के मकान नेहरू रोड बेल्टिया फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। नंबर 99 लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड की मिसेज हाफिजा बीबी करिम्बकस जो गोरी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए गिश्त का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। पॉइंट डिस्नी रोड बुवालो में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती ललिता गुलजौ पैदाशी नाम बुलक सिंह जो अमृता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान पॉइंटेसनी रोड बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तो वो मेबा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शेनफील्ड रोड हिविया जोपा में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड श्री देवानंद रामभरत जो जॉर्ज नाम से ज़रा जाने जाते थे और पहले हिविया जोपा में सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो के पूर्व कर्मचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती कविता रामभरत के मकान शेनफील्ड रोड हिविया जोपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरीव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 9:30। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

Well, with this beautiful track, आपका स्वागत करते हैं. यह है आपकी मॉर्निंग मस्ती, यानी कि मस्ती मॉर्निंग्स ऑन रेडियो मस्ती. सुबह की शुरुआत, और अब धीरे धीरे दिन आगे बढ़ते जा रहा है, काम काज होते जा रहा है, लेकिन जैसे हमने कहा, बैकग्राउंड में हमारे गाने चलते रहेंगे. मैं ऊपरी आपके साथ दिन के 12 बजे तक. साथ देने के लिए शुक्रिया एंड वार्म वेलकम.

0: और चलिए दोस्तों यहां पर हम होम डेकोरेशन की बात करते हैं और अक्सर हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें करना जरूरी नहीं होता अपने घर को स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल दिखाने के लिए आप थोड़े बहुत चेंजेस करके भी अपने घर को बेटर बना सकते हैं जैसे हम जानते हैं कि कभी-कभार आपको अपने घर का लुक चेंज करना होता है लेकिन न्यू सोफा इज नॉट ऑन द बजट येट सो प्रॉब्लम नहीं होता बस आपको क्या करना है कुशन कवर्स एंड जो थ्रोज होते हैं इसे आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स आप चूज कर सकते हैं और ये भी आपको याद रखना है ज्यादा कलर्स ऐड मत कीजिए वरना आपका जो रूम है थोड़ा सा क्योटिक लग सकता है सो बस 2-3 कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स और आपका जो रूम है एकदम क्लासी लुक देगा साथ ही जैसे हम कहते हैं ग्रीनरी जो है वो आंखों को ठंडक तो देती है और घर का लुक भी इंप्रूव करती है प्लांट्स आर प्रोबेबली द इजिएस्ट वे टू गिव योर होम अ फ्रेश एंड अ ब्यूटिफुल लुक और ब्यूटिफुल इंडोर प्लांट्स जैसे कि एक टेबल प्लांट या फिर एक फ्रेश फ्लावर का बुके आप यूज कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने घर को एक डिफरेंट सा टच और रूम का जो मूड है वो कंप्लीटली चेंज हो सकता है सो वेल फ्रेंड्स छोटे छोटे आइडियाज हैं और कभी कभार आप खुद भी कुछ क्रिएटिव ट्राई कर सकते हैं घर आप ही का है आइडियाज आप ही के हैं सो स्टे स्टाइलिश एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ
1: Alpa, deux petits pois, 500 grammes à 15,95 rupees. Basmati, first choice, grade 11-21, de 5 kg à 385 rupees. De l'huile N-Lit Omega 100% soya à

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: And well friends, with this track, it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते यहाँ पर यलेश हमारा साथ दे रहे हैं. So well, मैं हूँ परी आपके साथ. Thank you यलेश, आप साथ दे रहे हैं all the way from Suriname. Wishing a happy Monday to all the listeners और specially आपके परिवार के लिए भी special wishes. यहाँ पर connected हमारी dear listener अपनी good wishes लेकर आई हैं सभी सीतोहल परिवार के नाम. And रोशनी, happy happy मान मेरी जान, गाना हो गया आपके दिल के पास. तो चलिए इसी ट्रैक के साथ परी साइनिंग ऑफ. आ रही है पूनम लेकर योर रेट्रो रिदम, कुछ पुराने गानों के साथ आपको एंटरटेन करेंगी. स्टे कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ. मुलाकात होगी 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज. ये है रेडियो मस्ती.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से. अदिति, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव समाज के सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है. हालांकि इससे पैदा होने वाली संभावनाओं के अलावा इसे नियमबद्ध करने का मुद्दा भी अहम बनता जा रहा है. इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों की तैयारी का स्तर जानने के लिए हाल में एक अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स नामक नए टूल की लॉन्चिंग की गई है. इसकी जिम्मेदारी होगी अफ्रीकी महाद्वीप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही नीतियों, संस्थाओं और मैकेनिज्म्स का मूल्यांकन करना. मॉरिशस में ईंधन की कीमतें निर्धारित करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन अकाउंट अहम भूमिका निभाता है. ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दामों के उतार चढ़ाव का असर कम करने में मदद करता है. हालांकि भारी घाटे के कारण ये स्थिति पब्लिक फाइनेंस के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है. अर्थशास्त्री मनीषा दुकोनी का मानना है कि लंबी अवधि के संतुलन के लिए व्यावहारिक उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उत्तरी साइप्रस के समंदर में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं. जानकारियों के मुताबिक फेरी में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य सवार थे. प्रारंभिक जांच के तहत लापरवाही के आरोपों पर जहाज के कैप्टन और 7 क्रू सदस्यों को हिरासत में लिया गया. ये थी अब तक की खबरें. थोड़ी देर में शोक समाचार. नोवेल फ्रांस में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री अशोक कुमार कमल जो विशाल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी श्रीमती पिंकी कमल और उनके भाई श्री धीरज कमल के मकान नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM. रॉयल रोड कॉन्दमास SSS के सामने 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सनमत सियर किसुन जो दादी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे श्री सुनील अकुंग के मकान रॉयल रोड कॉन्दमास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्दमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM. शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है.
7: Retro Rhythm.
4: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम
1: 12:09 हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोपहर की इस प्यारी सी घड़ी में चलिए कुछ पल उस दौर के नाम करते हैं जब गानों के बोल याद करे जाते थे, धुनें गाई जाती थी और रेडियो घर का एक प्यारा सा छोटा सा सदस्य हुआ करता था। आज फिर उन्हीं सुनहरी यादों को थोड़ा सा ताज़ा करेंगे। मैं हूं आपके साथ पूनम और शुरू हो रहा है आपका रेट्रो रिदम सिर्फ RM2 रेडियो मस्ती पर। चलिए बहुत सारे नगमे यहाँ चलेंगे, पर अगर आपकी भी कोई फरमाइश है, आपके दिल का कोई ऐसा गाना है जो किसी के दिल को झिझोड़ कर रख दे, जो एहसास दिलाए कि पुराने गानों में जो मस्त फीलिंग थी वो आज भी बरकरार है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499-1294 पर। हम हैं आपके साथ, हमारी पूरी MBC टीम हमेशा आपके साथ रहती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप हमारे साथ होते हैं हमारा दिन तो सुहाना हो जाता है। और साथ में कहते हैं कि बहुत सारे नगमे ऐसे जुड़ जाते हैं हमारी लिस्ट में जिससे शो भी बहुत सुंदर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यारा सा रेट्रो रिदम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: सिकम के ग्रीन लोन जोन बा उ तोहरा एगो ऐसन जीवन शैली अपनाए खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमनी के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क करा या हमनी की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइहा। इमे नियम आशर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
2: RM2
3: Radio Musti

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:24 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ पूनम। इतने सारे मैसेजेस, क्या बात है, मुझे एहसास है क्योंकि आप उस दौर के इंसान हो जहाँ पर जो फिल्म्स हुआ करती थी ना एकदम से चर्चा में नहीं आती थी, धीरे धीरे धीरे धीरे वो चलती थी और फिर एक दूसरे से पता चलता था, अरे उस मूवी के गाने इतने अच्छे हैं, एक नया एक्टर आया, एक ऐसी एक्ट्रेस आई है जिसका स्टाइल बहुत बढ़िया है, उसने डिफरेंट स्टाइल कर रही है, कुछ साड़ी का अलग तरीका होता था, कुछ अलग कॉस्ट्यूम्स डाले जाते थे, कलरफुल होते थे और ज़िंदगी शायद दिखते हमें वो ब्लैक एंड वाइट में थे पर वो जो कलर्स होते थे उससे हमारी ज़िंदगी और सुंदर हो जाती थी। और हमने सच में बहुत कुछ बॉलीवुड से सीखा है, बॉलीवुड ना होता तो हमारे पास रेडियो ना होता, टीवी ना होता, चाहे आपके कहीं भी हॉलीवुड लो, बॉलीवुड लो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म लो जहाँ से हम कुछ सीखते हैं। और जब हमने सीखा तो इतना अच्छा सीखा कि आज ज़िंदगी में हम इन गानों के बिना, इन मूवीज़ के बिना रह नहीं पाते और जैसे थोड़ा सा उदास होते हैं तो कहते हैं चलो भाई मूवी देख कर आते हैं, कुछ गाने चलाते हैं। और ऐसे ही आपकी फरमाइशों के बहुत सारे हमारे पास नाम आ चुके हैं और हम एक एक करके चला रहे हैं वो सारे गाने। अगर आपको अभी भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5499-1294 पर। इस गानों के बाद लेंगे आपकी फरमाइशें।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: अरे नंदू बाबू आओ आओ आओ। अरे तुम्हारा पाँव कट गया।
1: कोई बात नहीं, थोड़ा सा चूना लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा।
0: नहीं नहीं दादी दवाई ले।
1: अरे अरे नंदू
0: नंदू रहने दो नंदू।
1: ये तू क्या कर रहा है पगले? मेरे लिए तू दवा लाया, पट्टी बांधी तूने,
0: तो क्या हुआ?
1: क्या हुआ वो तू नहीं समझेगा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम लोग क्या आज ही चले जाओगे?
0: हाँ थोड़ी देर में, बाबा गाड़ी लेने गए हैं।
1: फिर तू कभी नहीं मिलेगा?
0: क्यों नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा और अपना तालीस भी ले जाऊंगा, संभाल के रखना।
1: हाँ बेटा मैं जरूर रखूंगी।
0: अच्छा मैं जाता हूँ।
1: अच्छा जा बेटा।
2: अरे ये क्या, तू तो ब्राह्मण का बेटा होकर मेरे पैर छूता है?
0: तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा तो किसको करूंगा?
1: जा बेटा, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे।

0: रेट्रो रिदम।
1: क्या जमाना रहा होगा ना जब वहाँ पे डायलॉग्स इतने प्यारे। आज भी जब ये डायलॉग बज रहा था या बोला जा रहा था तो मुझे इतना एहसास हो रहा था कि वो मूवी में हम चले गए थे। कई लोगों ने ये मूवी देखी होगी, उन्हें एहसास होगा कि किस मोमेंट पे क्या चल रहा होगा। एक्शन इतने बहुत बड़े बड़े धमाकेदार उस ज़माने में नहीं होते थे, पर बस आँखें बोलती थी और कहते हैं कि ज़ुबान से वो जब डायलॉग्स निकलते होंगे वो आज भी हमारे दिलों को छू के जाते हैं। तो चलिए भाई आपके भी हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत देर से

0: में होंगे सभी। विश्वानी धुमन जी साथ दे रही हैं वाकवा से, उनकी बहन इंद्रा शारदा और सहेली नीला प्रतिभा शोभा और गीता जी के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। सारे गाने आप सभी के लिए हैं पर स्पेशली आपकी दोस्तों के लिए तो हमारा दिल ही हाजिर है। यलेश जी साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारी से खाने की प्लेट के साथ आपने मुझे भेजा है मैसेज, थैंक यू सो मच यलेश। खाना आप भी खाएँ और जो सभी खा रहे हैं इस टाइम बोना पेची और हमेशा आराम से खाएँ, सुकून से खाएं, एंजॉय कीजिए गानों को। चांदनी जी साथ दे रही हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं और हमेशा कह रही हैं कि सभी खुश रहें यही मैं चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आकाश चेतन मनसुख जी हैं और मनसुख फैमिली के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल चलाएंगे एक एक करके। पैरिस से भविष्य रघुनाथ जी साथ दे रही हैं और एक बर्थडे सॉन्ग चाहती हैं। उनके कज़िन का कल मतलब बर्थडे था विमल रघुनाथ जी का और उनको बस कहती हैं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो और मैं हमेशा चाहती हूँ हमेशा खुश रहो। थोड़ी सी मैं लेट हूँ पर फिर भी मेरे दिल से यही दुआ है कि तुम हमेशा हमारे आसपास रहो। सो नाइस ब्यूटीफुल मैसेज, हम भी चाहेंगे विमल जी हमेशा आप खुश रहें। आपकी कज़िन की तरफ से ये प्यारा सा मैसेज है। वीना गंगाधर साथ दे रही हैं और अपने हबी को बस इतना कहना चाहती हैं कि गुलाब भी कम पड़ जाते हैं तुम्हारे सामने और सभी फूल कम पड़ जाते हैं, सभी मेरा जो दिल है वो कम पड़ जाता है तुम्हारा प्यार देखकर। क्या बात है, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहें हमेशा खुश रहें। ज्योति जी शातो बनारस से जुड़ी हुई हैं साथ में एक प्यारे से हमारी आयशा तनवीर तेजल वनीशा वर्षा रायन रायना एंड कमला जी का तो फोन से साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। आप भी बहुत सारे जो देर में आए हैं उनके लिए हम फिर से दोबारा से मैसेजेस पढ़ेंगे बट आपको इतना ही कहेंगे आपके दिल की कोई आवाज़ हो या कोई ऐसा प्यारा सा गाना जो सब सुन सके ज़रूर भेजिएगा 5491294 पर। इंजॉय कीजिए अपने रेट्रो रिदम पर ये गाने।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती

रेट्रो रिदम। 12:54 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम। तो देखिए जो ये जो टाइम है ना, कैसे भागता है पता ही नहीं चलता। आप पहले ज़माने में देखिए कि आपको किसी के घर जाना हुआ करता था तो कोई अपॉइंटमेंट लेनी नहीं होती थी, बस बेझिझक बेधड़क कोई हाथ में कोई किसी के कटोरी हुआ करती थी, कोई सब्जी हुआ करती थी और बोलते थे अरे ये लो चलो भी खाते हैं, या कई बार वो बोलते थे चलो साथ में मिलकर चाय पीते हैं,

0: चलो दरवाजे पे कोई आ जाता था तो हम लोग ये नहीं सोचते थे पहले तैयार होना है और फिर दरवाज़ा खोलना है। सब लेडीज़ सुबह सुबह तैयार होके बैठ जाती थी और साथ साथ काम भी करती थी, नहा धो लेती थी और उसके बाद कोई भी आता था तो कोई स्पेशल कुछ ऐसा नहीं होता था। पर आज का ज़माना थोड़ा सा बदल गया है, पर हम तो चाहते हैं कि पुराना ज़माना अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे बदलाव बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो सबसे पहले तैयार होती है, स्मार्ट सी पर्सनालिटी बनाती है, फिर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर पूछना पड़ता है क्या हम आ सकते हैं आपके घर, या सैटरडे को या संडे को ही टाइम मिल पाता है। कई बार तो सैटरडे संडे लोगों ने किसी और के साथ अपॉइंटमेंट बनाई होती है तो भी नहीं जा पाते, तो परिवार के सदस्य बहुत बार नहीं मिल पाते। पर ये जो टाइम है इसको बहुत प्यार से अगर हम यूटिलाइज़ करें तो मैं तो सच में बताती हूँ कि एक तो घर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, परिवार में बहुत प्यार रहता है। अगर आपको एहसास होता है कि ये पुराना टाइम बहुत प्यारा था पर आज भी जो टाइम है बहुत अच्छा है, तो इसको मतलब बेस्ट यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ को। जो इस समय थोड़ा सा रेस्ट चाह रहे हैं रेस्ट कीजिए, पर जैसे ही कोई आपके परिवार वाले जो न्यू जनरेशन के हैं वो आए तो उसको इतनी ज़ोर से जप्फी डालिए, इतना प्यार कीजिए, उनको कहिए कि अरे आई वॉज मिसिंग यू, तो देखिएगा कि उनके दिल में भी कहीं ना कहीं आपके लिए और प्यार जाएगा। नाना नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, अपनी तरफ से बहुत प्यार करना चाहते हैं बट फिर भी आज की जनरेशन उन्हें गले नहीं लगाती, किसी नहीं करती, प्यार नहीं करती, तो थोड़ा सा दिल उदास हो जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं सोचिए, आज न्यू जनरेशन ऐसी है, उनको बस स्माइल कीजिए, प्यार दीजिए और छोटा मोटा पैसे वैसे दे दिया करो, छोटा मोटा गिफ्ट दिला दिया करो। चलो जी इंजॉय करते हैं रेट्रो रिदम पे प्यारे से गाने। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मेरे।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center.

0: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check दोपहर के एक बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी आपको नमस्कार.
4: नमस्कार पूनम जी. सभी को हमारा नमस्कार. एम्सो जल्द ही आवारा कुत्तों की दोबारा गिनती शुरू करेगा. इस बार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक नया तरीका अपनाया जाएगा. अब पैदल चलकर गिनती नहीं की जाएगी, इसके बजाय ड्रोन और थर्मल इमेजिंग की मदद से ऊपर से इन कुत्तों की गिनती की जाएगी. इन सेवाओं के लिए मार्केट स्टडी का एक नोटिस भी पिछले फरवरी महीने में जारी किया जा चुका है. ये एक ऐसा तरीका है जिसका दुनिया में लगभग कहीं इस्तेमाल नहीं होता है. अगर ये योजना अमल में आती है तो मॉरिशस निश्चित रूप से दुनिया के उन शुरुआती देशों में शामिल होगा जो आवारा कुत्तों की गिनती के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे. कासनोयाल के समुद्र से कल दोपहर बाद 58 साल के चंद्रजीत इतु का शव निकाला गया. वहीं के रहने वाले ये व्यक्ति इलोमाले के पास कठिनाई में पड़ गया था. रिवियनो के तटरक्षक उसकी मदद के लिए वहां गए लेकिन बहुत देर हो चुकी थी. पोस्टमार्टम के अनुसार उसकी मौत डूबने से दम घुटने के कारण हुई. दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों के मारे जाने की खबर है. कल दोपहर बाद ओमोन में एक 4x4 और एक बस के बीच हुई टक्कर में कुतुगाफे के रहने वाले 18 साल के अल्बेर माचे की आज सुबह मौत हो गई, जबकि गुडलैंड्स के रहने वाले 32 साल के जेविन ग्रिधर की एक सड़क हादसे के बाद इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई. वो मोटरसाइकिल पर था जब सैतौतवान गुडलैंड्स में एक गाड़ी उससे टकरा गई जो 19 साल की एक लड़की चला रही थी. और विदेश खबरों में अमेरिका के अरिजोना स्थित ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में आए भीषण तूफान और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. बाढ़ की चपेट में आने से कम 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि अब तक 62 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. और उत्तरी साइप्रस में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोग मारे गए हैं और 18 लापता हैं. जहाज में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे. खोज और बचाव कार्य जारी है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. कुछ ही देर में शोक समाचार. रॉयल रोड कॉन्डोमास्क एसएसएस के सामने 91 साल की 91-year-old की श्रीमती सुनमत सेकिसुन, जो दादी से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे सुनील आकुंग के घर रॉयल रोड कॉन्डोमास्क से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM. नोवेल फ्रांस में 49 साल के श्री अशोक कुमार कुरमुल, जो विशाल से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल मंगलवार 1 सितंबर को सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी पिंकी और भाई धीरज कुरमुल के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर मारिजानी रोजबेल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगी. फ्यूनरल टुमरो एट 9:30 AM. शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti.

0: ट्रू रिदम।
1: एक बज के 7 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे गाने चल रहे हैं, और जब जिस तरीके से इसने कहा ना आज फिर गाना गाएंगे, सच में ऐसे ही लग रहा था कि सारे मिलके एक साथ गाना गाएं। पर क्या करें, गाना तो अभी नहीं गा सकते, पर हाँ आपके मैसेजेस ज़रूर पढ़ सकते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललित जी, USA से साथ दे रहे हैं और पुराने गाने सुनते ही कह रहे हैं मैं झूम रहा हूँ यहाँ पर और लेट उठा हुआ हूँ तब भी सोने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, आप USA से साथ दे रहे हैं और साथ में इंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच सर। महेंद्र सर साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं दिल खुश हो गया पुराने सिनेमा की बात सुन के, और मैं तो चाहता हूँ कि बताना भी चाहता हूँ कि 55 साल पहले बॉलीवुड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और ये सच बात है जब पुराने गाने चलते थे उस ज़माने में तो हमारा कितना दिल खुश होता था, वो मोमेंट और आज का मोमेंट सेम लगता है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने ये वो टाइम हमारे साथ शेयर किया। गीतांजलि जी साथ दे रही हैं, फिया जी साथ दे रही हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश की है, बिल्कुल हम चलाने वाले हैं अमर प्रेम का। ओके, तो एक हमारे सर ने मैसेज करके पूछा SMS करके कि प्लीज़ आप बता सकते हैं कि वो कौन सी मूवी में डायलॉग था जो अभी आपने गाना चलाया था। सर वो था अमर प्रेम मूवी का, तो आप ये मूवी भी देख सकते हैं और डायलॉग भी सुन सकते हैं। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं और कह रही हैं लंच आवर है और मेरा दिल खुश हो गया पुराने गाने सुन के, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जयमिनी जी, सोमिया जी साथ दे रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। अब्दुल एंड सायरा बानो साथ दे रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। खूब लाल फैमिली के लिए गाने चलेंगे, और मैं तो कहती हूँ ये सारे गाने आप ही की सबकी फरमाइश के होते हैं, पर आप सबको इतना ही बस कहूँगी कि आपके दिल की कोई बात ऐसी हो जो कुछ स्पेशल हो, रिलेटेड बॉलीवुड हो, आपको किसी को मैसेज करना है तो प्लीज़ अपनी डेडिकेशन ज़रूर भेजिएगा 5491294 पर। इंजॉय कीजिए अपने गाने।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम।
1: एक बजकर 24 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और मैं इस समय आपके साथ हूँ पूनम। आपको याद है वो ज़माना जब हम किसी एक्टर को देखते थे या किसी एक्ट्रेस को देखते थे और अपने स्कूल की नोटबुक को खोल के कहीं ना कहीं उसकी फ़ोटो ढूंढ के लाते थे। वो ज़माना अनोखा सा होता था ना, और वो फ़ोटो चिपकाते थे कि मम्मी पापा को ना पता चले, बड़ी

0: को ना पता चले, बड़े भाई को ना पता चले, वरना बहुत पिटाई होती होगी। तो वो ज़माना भी एक था जब हम लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं होता, फ़ोटोज़ नहीं होती थी, कहाँ कहाँ से वो। कई बार तो मुझे याद है कि वो मसाले वाली जो जहाँ पे कैंडीज़ होती थी उसमें भी कई बार फ़ोटोज़ आती थी, उसको भी क्लीन करके हम साफ़ करके फिर से चिपका लेते थे और बोलते थे इसको ये देख के ना हमें कुछ होता है। बहुत सारे का जैसे कई बार अमिताभ बच्चन को देख के होता था, दिव्या भारती को देख के होता था, और उससे पुराने टाइम में भी चले जाएं तो उस ज़माने में भी नोटबुक्स में तो मुझे नहीं याद कि मुझे पता नहीं है कि बड़े किसी ने बताया हो या ना बताया हो, पर अगर कोई नई न्यू जनरेशन का ये प्रोग्राम इस समय सुन रहा है तो अपने दादा दादी नाना नानी या मम्मी पापा से पूछना, वो टाइम इतना खूबसूरत था कि वो जो फ़ोटोज़ होती थी शायद हम लोगों को एहसास होता था कि ये एक्टर इसके जैसे हमें बनना है, इसके जैसे हमें एक्टिंग करनी है। और कई बार हम ऐसे ही करछुल पकड़ के या कोई ऐसी चीज़ पकड़ के हम लोग डायलॉग्स बोला करते थे और कहते थे मैं देखो ये हूँ मैं वो हूँ। तो ये टाइम भी बहुत अच्छा था, मैं तो यही जानती हूँ। आपको भी कोई याद है वो ही मोमेंट, ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करना, बताना किसी अपने ऐसे पुराने दोस्त को फ़ोन करके या मैसेज करके बताना तुझे याद है हम ये किया करते थे। तो अगर आपको भी ऐसे वो दिन है तो हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं 5499-1294 पर। और कोई ऐसा गाना जो आपकी मेमोरी में आज भी है, दिमाग पे जोर डालिए कि जिससे आपको अपना वो टाइम, एक स्पेशल डे, स्पेशल टाइम याद आता है। ये नहीं कि आपको वो सुनना है, बस ये बताइए हमें कि वो टाइम याद है, वो गाना आपको याद है आज भी, जो आपको उस ज़माने में उस याद में लेके जाता है। यहाँ पर हम हैं आपके साथ, आपके मैसेजेस के साथ, हमारा भी दिन खुश होगा और आपका तो मूड हम बना ही रहे हैं। आपके गाने चला गए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:35 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, जहाँ पे हम चलाते हैं पुराने गाने, जहाँ पे दिल को थोड़ा सा उन जमानों में लेके जाते हैं, उस यादों में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपको एहसास होता है अरे हम भी कभी जवान हुआ करते थे। तो ये जो टाइम था ना, मुझे एहसास होता है कि बहुत ही बढ़िया रहा होगा आपका। सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पर जो ये टाइम है, जो आप जिस टाइम में इस समय रह रहे हैं, इसको हंसाना और मुस्कुराना बहुत इंपॉर्टेंट है। RM2 रेडियो मस्ती हमेशा आपके लिए हर टाइम के, हर जनरेशन के हिसाब से, हर समय के हिसाब से आपके लिए वो गाने चूज करके लाता है जिससे आप अपलिफ्ट होते रहें, आपको थकावट ना हो, आपको आपका मूड थोड़ा सा ड्रॉप ना हो। पर कई बार ऐसे गाने हमारे लिए, हमारी फरमाइश की जाती है दोस्तों की तरफ से, तो बट वो थोड़े से सैड होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि इस टाइम किसी को सैड किया जाए। पर फिर भी आपके दिल की जो फरमाइशें होती हैं, हम सभी के लिए चलाते हैं। पर चलिए दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। जीना जॉय श्री जी पैरिस से साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं प्रोग्राम को। कल्याणी सेतुल जी साथ दे रही हैं, इन्जॉय कर रही हैं। रेशमा रामकिशन जी अपने हस्बैंड आशीष बिथिया मिष्टी एंड हिमाक्षी जो कि वाकवा से हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, और बस अपने हस्बैंड को इतना ही कहना चाहती हैं, बहुत प्यार करती हूँ तुमको। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सपना जी अपने मेरे लव प्रकाश के लिए एक प्यारा सा गाना चला दो, क्योंकि मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, और अगर मिस कर रहे हैं तो फिर मिस मत कीजिए, हम आपका गाना ज़रूर चलाएंगे। पर आपका जो फरमाइश है वो रेट्रो रिदम से मिलती जुलती नहीं है, पर फिर भी हम आपके लिए एक प्यारा सा गाना लेकर आ रहे हैं, ये गाना आपके लिए स्पेशली।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

से बॉलीवुड रेडियो मस्ते तो दोस्तों आज के रेट्रोरिदम में मेरे साथ आप यहीं तक साथ था और इन गीतों ने आपको पुरानी यादों को याद दिला दिया होगा। मैं तो आपको यही कहूंगी यादों के साथ जुड़े रहिए, आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ जुड़े रहें, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आरएम टू रेडियो मस्ती पर। आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी और मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है परी का बॉम्बे टॉकीज में, उससे पहले होगा न्यूज़।

0: आप लोग भी गाइए, पूरा गीत नहीं तो इतना तो गा सकते हैं। जुम
1: जुम
0: गुड। आप ला ला ला
2: ला ला ला
0: वेरी गुड। और आप
2: हा हा हा
0: वेरी वेरी गुड।
1: जुम

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, दोपहर के 2 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से. गीता जी, आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इससे मिलने वाले अवसरों के साथ

0: साथ इसे सही तरीके से नियंत्रित करने का सवाल भी उठ रहा है। अफ्रीकी देशों की इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी का स्तर जानने के लिए एक नया उपकरण लॉन्च किया गया है, अफ्रीकन एआई गवर्नेंस इंडेक्स। ये सूचकांक अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देशों में एआई के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। आज ब्रूनो लोरेट की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, द अम्ब्रेला, द पावर बिहाइंड ग्लोबल लॉ और नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन के जरिए ब्रूनो लोरेट संस्थाओं, सुरक्षा और सत्ता की सीमाओं पर अपने विचार सामने रखते हैं। विदेशी खबरों में अमेरिका के एरिजोना स्थित ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में आए भीषण तूफान और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कम से कम 20 लोग लापता बताए जाते हैं, जबकि अब तक 62 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और उत्तरी साइप्रस में एक यात्री जहाज के उलट जाने से कम 8 लोग मारे गए हैं और 18 लापता हैं। जहाज में 259 यात्री और 8 क्रू सदस्य थे। खोज और बचाव कार्य जारी हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, आफ्टर मॉर्निंग शो इट्स टाइम एक बार फिर आपका एंटरटेनमेंट हम करें यहाँ पर. मूड थोड़ा सा चेंज होगा, गानों का अंदाज थोड़ा सा बदलता हुआ, बिकॉज इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूँ परी आपके साथ. 2:07 हो रहे हैं एंड आई डू होप दैट मंडे आज मस्त स्टार्ट हुआ है. मेरा मंडे तो आज काफ़ी लॉन्ग मंडे, सुबह 9 से आपके साथ कनेक्टेड रही 9 से लेकर 12 तक, और उसके बाद आफ्टर योर मस्ती मॉर्निंग्स इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज, जहाँ पर बी टाउन की खबरें आप तक हम पहुँचाते हैं मंडे टू फ्राइडे. अभी के लिए भी कुछ और खबरें हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे, सो आप भी हमारा साथ दीजिए अभी से लेकर दिन के 4 तक. और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम. 5499-1294 पर होगा आपका इंतजार.
3: More music in the mix.
0: आज आजादी है. Bombay Talkies, Radio Musty,
1: Radio.

0: मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म हैवान की. फिल्म हैवान के बारे में डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने काफ़ी कुछ कहा. उन्होंने बताया कि किस तरह कई अभिनेताओं के पास से गुजरकर ये रोल फाइनली अक्षय कुमार तक पहुंचा. फिल्म हैवान के डायरेक्टर प्रिया दर्शन ने बताया कि कई एक्टर्स ने फिल्म ठुकराने के बाद अक्षय कुमार ने इस किरदार के लिए हामी भरी और क्या है इसके पीछे की कहानी ये भी उन्होंने शेयर की. फिल्म हैवान को लेकर प्रिया दर्शन ने कई खुलासे किए. इसमें से एक में उन्होंने बताया कि कई एक्टर्स ने फिल्म के इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था, मगर अक्षय ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया. और एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर ने आगे बताया, मैंने कभी इस भूमिका के लिए अक्षय के बारे में नहीं सोचा था. मैंने कभी अक्षय को इस किरदार में नहीं देखा और मैं उनसे यूं ही कह रहा था कि एक किरदार है और कोई उसे करना नहीं चाहता. उस समय भूत बंगला की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के बीच में ये बात निकली और अक्षय ने कहा कि वो इस रोल को करना चाहते हैं, मगर अक्षय ने कहा कि वो इस फिल्म को करेंगे क्योंकि हमेशा से उन्हें एक मानसिक रूप से बीमार इंसान का किरदार निभाने में काफ़ी इंटरेस्ट था. साथ ही अपनी बातचीत में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने कहा कि मैंने जिन कई अभिनेताओं से संपर्क किया उन्होंने मुझे मना कर दिया और वो तो उस किरदार के इर्द गिर्द अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखने लगे, यानी कि जो स्क्रिप्ट थी उससे हटकर जो भी एक्टर्स के पास वो गए वो अपनी तरह से इस रोल को मोड़ना चाहते थे. और यहाँ पर प्रियदर्शन ने आगे बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि ये जो स्क्रिप्ट है अगर उसमें बदलाव किए जा रहे हैं तो रोल जो है वो नहीं रहेगा और जिस इंसान को वो दिखाना चाहते हैं वो भी कम्प्लीटली बदल जाएगा. इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, इस फिल्म को मैं अभी भूल ही जाता हूँ. जब तक कोई सही एक्टर मुझे नहीं मिलता तब तक मैं इस रोल को नहीं करूँगा, इस फिल्म को नहीं बनाऊँगा. लेकिन तभी उनकी बातचीत अक्षय कुमार से हुई और अक्षय कुमार ने कहा कि इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड टू डू दिस रोल क्योंकि इस तरह किरदार उन्होंने कभी निभाया नहीं था. और ये भी हम जानते हैं दैट थोड़े से नेगेटिव किरदार में हमने देखा था उन्हें अजनबी फिल्म में और उनका ये कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आया. तो अब देखना ये है कि हैवान फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है जो थोड़ा सा ग्रे शेड या फिर नेगेटिव है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा. लेकिन इसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और हैवान में बोमन ईरानी, सैफ अली खान भी उनके साथ नजर आने वाले हैं. सो लेट्स वेट एंड वॉच कि ये किरदार लोगों को कितना पसंद आता है, हैवान फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है.
0: RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
6: North, South,
7: 103.5.
6: East, West,
7: 96.4.
6: Center,
7: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
8: Time check, 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें। गीता जी से आपको नमस्कार।
9: नमस्कार परी, सभी को हमारा नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही है, लेकिन इससे मिलने वाले अवसरों के साथ साथ इसे सही तरीके से नियंत्रित करने का सवाल भी उठ रहा है। अफ्रीकी देशों की इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी का स्तर जानने के लिए एक नया उपकरण लॉन्च किया गया है, अफ्रीकन AI गवर्नेंस इंडेक्स। ये सूचकांक अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देशों में AI के जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीतियों, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। आज बुइनो लोगैत की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, द अम्ब्रेला, द पावर बिहाइंड ग्लोबल लॉ और नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन अफ्रीका एंड द इंडियन ओशन। इनके जरिए बुइनो लोगैत संस्थाओं, सुरक्षा और सत्ता की सीमाओं पर अपने विचार सामने रखते हैं। विदेशी खबरों में, नेपाल में आई जल प्रलय की भयावहता से दो दिन पहले ही पहाड़ खतरे के संकेत देने लगे थे। चीनी सीमा पर केरांग से लेकर त्रिशूली नदी और उसके पार

0: नेपाल के रसुवा तक जगह जगह भूस्खलन होने लगा था। पहाड़ से पत्थर खिसक रहे थे और रास्ते बंद हो गए थे। नेपाल में लापता लोगों की संख्या बढ़कर 4,200 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। खोज अभियान में आग बुझाने और बचाव के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। सीमा के दोनों तरफ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, जिससे राहत और बचाव कार्य लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। अगले 24 घंटों तक लगातार बारिश होने का अनुमान है। और आज तेल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की तेज बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत फिर से $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिकी सेना ने होमुज जलमार्ग में ईरान के लारक द्वीप पर 2 ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। जुलाई के अंत के बाद ईरान पर अमेरिका का ये पहला हमला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। इकबाल रोड विचे मिल्ट्रियोली में 58 साल के 58-year-old के जनाब अशरफ चेदी, जो अशरफ से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 बजे उनकी बेगम मिसेस बीबी रुखसाना मनबहाल के घर इकबाल रोड विचे मिल्ट्रियोली से उठाकर रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों, ये है आपका अपना बॉम्बे टॉकीज़। अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ दिन के चार बजे तक। एक्टर अनुपम खेर चार दशक यानी कि 4 decades से फिल्मी दुनिया में एक्टिव है। उन्होंने थिएटर से लेकर बड़े पर्दे तक अपने अभिनय का रंग जमाया है। बतौर एक्टर और डायरेक्टर उन्होंने काम किया। अब वो पूरे दमखम के साथ अभी भी एक्टिव है और आज यानी कि ऑन दिस मंडे उन्होंने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर नई फिल्म के बारे में जानकारी शेयर की है और ये उनके करियर की 555th फिल्म होगी यानी कि 595वीं ये उनकी ये फिल्म है। और अनुपम खेर ने पोस्ट के साथ लिखा है कि फिलहाल ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ, ये बेहद खुशी की बात है। हालांकि ये फिल्म किस मुद्दे पर है और बाकी जो अपडेट्स हैं ये मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगा, सो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। लेकिन 555th फिल्म का ऐलान हो गया है एंड दैट्स अनुपम खेर। और ये तो हम जानते हैं, बी इट नेगेटिव रोल्स बी इट कॉमेडी रोल्स, उन्होंने हर एक रोल में अपना जो दमखम है वो दिखाया। और ये हम जानते हैं कि जब इमोशनल रोल्स भी वो करने पर आते हैं तो इंसान का दिल छू लेते हैं। सो दैट्स अनुपम खेर, अ सुपर्ब एक्टर। 555th फिल्म उनकी जल्द रिलीज होने वाली है। कौन सी होगी फिल्म, क्या होगा मुद्दा, इसके बारे में देंगे वो डिटेल्स थोड़े ही दिनों बाद, सो करेंगे थोड़ा सा इंतज़ार। वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए कुछ और प्यारे गाने आपके लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसी फिल्म की जिससे कुछ ज्यादा उम्मीदें थी नहीं लेकिन इस फिल्म ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड्स। फिल्म हनुमान अंश 7 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। ये नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है और बॉक्स ऑफिस पर ये जब रिलीज हुई तो कोई खास तवज्जो नहीं मिली। आलम यह था कि दूसरे वीक तक फिल्म लाखों में ही कमाई कर रही थी और कई सिनेमाघरों में कथित तौर पर फिल्म हटा ली गई और तीसरे वीक से मानो जैसे एक चमत्कार हुआ और फिल्म हनुमान अंश को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया। फिल्म जब थिएटर्स में लगी तो शुरुआती 2 हफ्ते काफ़ी ठंडे रहे और 2 वीक में कुल कमाई इसकी रही इन लैक्स, लेकिन तीसरे वीक ने इस फिल्म को एकदम एक अलग रूप दिया। चौथे वीक में ये हाल था दैट बॉक्स ऑफिस पर ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती गई। सो आपको बता दें ओपनिंग डे पर हनुमान अंश ने कमाए 10 लाख रुपए। पहले सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में इसकी कमाई रही 1.8 करोड़, दूसरा सप्ताह सेकेंड वीक में घटकर हो गया 40 लाख, तीसरे सप्ताह में इस फिल्म ने कमाए 10.40 करोड़, 22वें दिन ऑन 22nd डे इस फिल्म ने कमाए 6.25 करोड़, 23वें दिन इस फिल्म की कमाई रही 9.25 करोड़ और 24th डे फिल्म का कलेक्शन रहा 12.75 करोड़। फिल्म का बजट रहा 2 करोड़ लेकिन अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 करोड़ पार कर चुका है और जैसे हमने कहा कि फर्स्ट 2 वीक्स काफ़ी ठंडा रहा इस फिल्म के लिए और लोगों को लगा कि ये फिल्म कुछ खास है नहीं। 2 सप्ताह में इस फिल्म ने बस लाखों में कमाई की थी एंड फाइनली ऑन 24th डे इस फिल्म ने कमा लिए हैं 40 करोड़। सुपर डुपर हिट हो गई है ये फिल्म और जो इससे उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी, यानी कि प्रोड्यूसर नया है, डायरेक्टर नया है, कोई बड़ा एक्टर भी नहीं है, इसके बावजूद हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कर रहा है धमाल। सो चलिए अगर इस फिल्म को आपने नहीं देखा देखिए जरूर। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि जहाँ पर उम्मीदें होती है काफ़ी ज़्यादा, हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक फिल्म की। काफ़ी हाई बजट में ये फिल्म बनी और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई थी इस फिल्म से। ये उम्मीदें थी कि ये फिल्म 100 करोड़ क्या 200, 300, 400 करोड़ पार कर जाएगी लेकिन अभी के लिए तो औंधे मुँह गिर गई है एंड दैट्स टॉक्सिक आपके लिए। और वहीं हनुमान अंश जो बनी बस 2 करोड़ रुपए में, महज 2 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है 40 करोड़।

वेल फ्रेंड्स विद दिस ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुडबाय. जाते जाते डेविसन लाल माटी से हमारा साथ दे रहे हैं. दिस वन गोज आउट फॉर यू. अब्दुल अंसारा बानू हमारा साथ दे रहे हैं. ये गाना आपके नाम. एक वाली गोज आउट हमारे डियरेस्ट अपारू परिवार के नाम जो हमेशा हमारा साथ निभाते हैं. सो आफ्टर मी आ रही है गिनीशा लेकर योर अवतार वाइब्स. उनका साथ निभाइए एंड एंजॉय योर टाइम ऑन रेडियो मस्ती. परी साइनिंग ऑफ. मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: Check your time. It's already 4 PM. I sent you a samachar. Geeta ke saath namaskar.
8: Namaskar Ginisha. Sabhi ko hamara namaskar. साल की शुरुआत से अब तक हमारी सड़कों पर 103 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। 1500 से ज्यादा वाहन चालकों की अल्को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 500 चालक ड्रग्स के प्रभाव में पाए गए। इन चिंताजनक आंकड़ों के बीच रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में शराब या ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाने से जुड़े मामलों में वाहनों को जब्त करने का प्रावधान है। इनमें रोड रेज यानी सड़क पर गुस्से से आकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने जैसे नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इसके लिए 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 12 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और किसी की मौत के कारण बनने वाले व्यक्ति को दोबारा ऐसा अपराध करने पर 10,00,000 रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 300 से ज्यादा मॉरिशन कंपनियों ने ट्रेड एंड मार्केटिंग स्कीम का लाभ उठाया है, जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड संचालित करता है। इसके तहत कुल 2.2

0: 2 बिलियन रुपए की राशि वापस की गई है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य मॉरिशस के उद्योगों को अपने उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना है। इसी सोच के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने आज सुबह गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं और कंपनियों को अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। नीलकंठ डलू ने लेबर पार्टी को छोड़ दिया है और अब पुल बेहोंजे के साथ फों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस में शामिल हो गए हैं। वकील का कहना है कि ये फैसला उन्होंने अचानक नहीं लिया, बल्कि पिछले साल से ही कई महीनों तक विचार करने के बाद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर ये फैसला किया है। नीलकंठ डलू ने आज लेबर पार्टी से अपने इस्तीफे को आधिकारिक रूप से घोषित किया। उन्होंने गैम्बलिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्वतंत्र बोर्ड सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उनका ये दोहरा इस्तीफा उनके राजनीतिक सफर में एक नए मोड़ की शुरुआत है। अब उन्होंने पुल बेहोशी की नई पार्टी का साथ देने का फैसला किया है। मिथुन चुलन आज रिवियनॉ की जिला अदालत में पेश हुए। उन पर 3 अस्थायी आरोप लगाए गए हैं। गांजा आयात मामले में शामिल होने, गैरकानूनी तरीके से गोलियां रखने और अपने हथियार लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप। उन्हें 7 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। और विदेशक खबरों में आज तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा की तेज बढ़ोतरी हुई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत फिर से $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी तब हुई जब अमेरिकी सेना ने होमुज जलमार्ग में ईरान के लड़ाक द्वीप पर 2 ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया। जुलाई के अंत के बाद ईरान पर अमेरिका का ये पहला हमला है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। इकबाल रोड विच मिल थ्रियोली में 58 साल के 58 ईयर ओल्ड के जनाब अशरफ चेडी, जो अशरफ से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 उनकी बेगम मिसेस बीबी रुखसाना मुनबहाल के घर इकबाल रोड विच मिल थ्रियोली से उठाकर गिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 8:30 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि रेडियो मसीह हमेशा सुनते रहना चाहिए क्योंकि वी हैव गॉट यू द गुड वाइब्स ऑन आवर इंटू रेडियो मसीह। ऑलरेडी 4:08 हो चुके हैं, सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? ऐसे मंडे का आफ्टरनून है और अगर मॉर्निंग थोड़ी स्लो थी तो कोई बात नहीं, अभी जैसे बोलते हैं ना कि दिन बाकी है और एनर्जी फुल ऑन पावर लेने का नाम है क्योंकि इट्स योर रफ्तार वाइब्स जहां पे गणेश आपको लेके जाते हैं ऑन योर फिल्मी राइड्स। कभी कभी क्या होता है ना कि मंडे हमें बोलता है कि बस कर यार, वीकेंड वापस चाहिए, लेकिन हम तो बोलते हैं नो वे, मंडे भी अपना ही तो है। सो आज का ये जो दिन है फ्रेश स्टार्ट आपने तो कर लिया है, जो काम पेंडिंग है ऑफकोर्स वी गॉट सो मेनी डेज आई हैड टू कम्प्लीट इट, जो गोल सामने है उसकी तरफ एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अपने मूड को किसी के एक डिफिकल्ट मोमेंट के हाथ मत दो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा आप स्माइल करें, पॉजिटिव रहिए और हमेशा याद रखें कि गुड वाइब्स हमेशा कंटेजियस होती हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर टू स्प्रेड इट ऑन आवर एंटू रेडियो मस्ती। तो वॉल्यूम थोड़ा अप कर लीजिए, कॉफी हो या चाय जो भी पीना है पी लीजिए, बस हमारा साथ दीजिए। एंड टू ऑल दोस्ट जो ऑलरेडी काम से निकल चुके हैं टू हिट द रोड, ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना क्योंकि वी हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन आवर एंटू रेडियो मस्ती।
1: RM2 Radio Mustang.

0: दी आराम से गाड़ी चलाना क्योंकि we've got you the best mix of music on R12 Radio Masti.
1: R12 Radio Masti.

0: to Radio Musti.
1: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सब अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करें। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी एकोलोजी खा इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आशर्त भी लागू बा सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
0: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: RM2
5: रेडियो मस्ती।
4: फील द मस्ती।

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2
2: Well guys, I really hope that you guys are really loving and enjoying this beautiful and lovely गानों का selection सा जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए on RM2 Radio Mastery. जी हाँ, मंडे का तो three quarter दिन तो वैसे ही खत्म होने को हैं, और अगर आप सोच रहे हो बस अब वीकेंड कब आएगा, अभी तो शुरू हुई है मेरी जान. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ओ माई गॉड इट्स मंडे, कि नहीं सो मंडे ब्लूज तो फील होता ही है. बिल्कुल जी, एंड आई रियली होप दैट यू हैड अ ग्रेट वीकेंड. सो बैक टू नॉर्मल लाइफ, जब भी मंडेज आते हैं तो ऐसा ही कुछ फीलिंग आ जाता है. लेकिन जब अच्छे गाने हम लेकर आते हैं ना आप लोगों के लिए ऑन आवर इंटरव्यू रेडियो मस्ती, आई गेस कि जितने भी आपके वरीज

हैं, जितने भी फिकर है आप बस भूल जाइए, साइड में रख दीजिए, आप बस एंजॉय कर लीजिए खूबसूरत गानों का ये सिलसिला जो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। सो टू ऑल दोस हु आर ऑलरेडी ड्राइविंग, ड्राइव केयरफुली, मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग। अगर ट्रैफिक में फंसे हो, कुछ ऐसे ट्रैफिक रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, 5499214, दैट्स द नंबर टू डायल, या सिंपली एक मैसेज भी आप भेज सकते हो 5499194 पर। 4:30 तो बजने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी तो 4:21 हो चुके हैं। तो हियर वी गो, आई गॉट यू दिस ब्यूटीफुल एंड लवली सॉन्ग। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं ना कि रफ्तार वाइब्स इज ऑन, सो वॉल्यूम भी थोड़ा हाई होना चाहिए।

guys, time bita chala ja raha hai 4 baj ke 31 minutes ho chuke hain. You're listening to Ganesha right now on RMT Radio Masti, and that's your Raftaar Vibes, your filmy rise, jahan pe acha acha music ke sath acha acha baatein bhi to hum karte rehte hain. So my dear lovely share listeners, life na bahut hi interesting hoti hai. वैसे कभी सब कुछ परफेक्ट लगता है और कभी कभी लगता है ना कि कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है हमारी लाइफ में जितने भी हमने प्लानिंग की थी. वेल, शायद लाइफ की ब्यूटी भी इसी में है, बस देखने का नजरिया अलग होना चाहिए. हम अक्सर हैप्पीनेस को बिग बिग मोमेंट्स में सर्च करते हैं. सक्सेस मिलेगा, पैसा होगा, हॉलीडे पे जाएंगे तभी हम खुश होंगे. बट ऑनेस्टली खुशी छोटी छोटी चीजों में भी आपको मिल सकती है. सुबह की एक पीसफुल कप ऑफ चाय अगर आपने पी ली, फेवरेट गाना आपने सुन लिया, किसी अपने का मैसेज आया, फ्रेंड्स के साथ सिंपल कन्वर्सेशन में आप हंसते रहे, या बिना किसी रीजन के बस स्माइल कर देना, लाइफ परफेक्ट नहीं होगी और शायद होनी भी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट कुछ प्लान्स वर्क नहीं करेंगे, कुछ लोग जो है लाइफ में आएंगे और चले भी जाएंगे, बट एवरी एक्सपीरियंस हमें ना कुछ सिखा ही देते हैं, सिखा ही जाता है लाइफ में. सो आज एक सिंपल प्रॉमिस खुद से करना जरूरी है मेरी जान. कंपैरिजन थोड़ा कम, अप्रिसिएशन थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए. प्रॉब्लम्स पे फोकस थोड़ा कम और पॉसिबिलिटीज पे थोड़ा ज्यादा. जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, जो चाहिए उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, और जो कंट्रोल में नहीं है ना उसे लेट गो करना सीख दीजिए, क्योंकि लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग, लाइफ इज अबाउट एंजॉयिंग व्हाट यू हैव व्हाइल वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट यू वांट इन लाइफ. तो स्माइल कीजिए, दिल हल्का रखिए और लाइफ को थोड़ा एंजॉय कीजिए. आखिर में एक ही लाइफ तो है ना, तो सिर्फ सर्वाइव नहीं, थोड़ा खुल के लीव भी कर लेना चाहिए और अच्छे अच्छे गाने भी सुन लेना चाहिए. सो थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, एंड ऑफ कोर्स लाइफ ऑलवेज व्हाटएवर यू मैनिफेस्ट विल कम बैक टू यू.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
5: Check your time is already 4:39 on RM2 Radio Mist. It's time for some latest sports news. Hamare sports guru ke saath. Good afternoon, Arvind ji.
6: Good afternoon, Gunisha. Good afternoon, Radio Mist listeners. वैसे हमारे listeners को बता दें कि जैसे मैं studio में यहाँ पर आया, Gunisha used to say namaste. आज वो ऐसे high five कर रही है. मैंने सोचा
5: क्यों कर रही है,
6: क्यों कर रही है ऐसा, तो समझ में आ गया होगा आपको क्यों कर रही है, क्योंकि पांच गोल जो यूनाइटेड ने स्कोर किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, सो यू हैप्पी?
5: ऑफ कोर्स, मेरी ये खुशी की सीमा नहीं दिख रही है। मेरे 36 जो डांट की दुकान है वो बाहर है ना आज।
6: जब से फास्टिंग शुरू की है आपने, आपकी टीम में अब थोड़ा जोश आने लगा है।
5: बप्पा उनके बप्पा की कृपा उनके ऊपर भी बनाए रखे।
6: चलिए, बप्पा को कहना था थोड़ा लिवरपूल की ओर भी कृपा बरसाए।
5: अभी नहीं, अभी नहीं, एक ही तरफ ध्यान दे सकते हैं।
6: ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, यू नो, आई मीन अभी बताएंगे क्यों बप्पा सिर्फ एक नहीं, दो तीन जगह ध्यान दे सकते हैं। आफ्टर दिस स्पोर्ट्स विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो इधर ट्रांसफर बाजार कल बंद हो जाएगा और आज जल्दी जल्दी जितना हो सके पैनिक बाइंग तो नहीं करेंगे, लेकिन खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। मैनचेस्टर सिटी उसने पाल्मेरा से विंगर अलन एलियास को साइन किया 34.2 million। Nottingham Forest ने फुलबैक डैनियल मुनोज को साइन किया है फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस अराउंड 22 million pounds sterling। एवर्टन भी कुछ लेट शॉपिंग करना चाहता है, मोनाको के फुलारिन बालोगन और फ्लोरेंटिना से बीटू भी आ रहा है। चेल्सी भी मोनाको के पीछे, मोनाको के लामिन कमारा एज ए पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी टारगेट एंजो फर्नांडेज। पेरिस सेंट जर्मेन ब्राडले बाकोल आर क्लोज टू लिवरपूल मूव, ये बार बार सुनते रहे हैं लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा है। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच कोडी गाकपो को लेकर बातचीत जारी है, इट कुड बी 85 million pounds sterling। और लिवरपूल की नजर अभी तक ब्राइटन के यांकूबा मिंटे और क्रिस्टल पैलेस के इस्माइल असार पर है एज पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर कोडी गाकपो, जबकि एवर्टन का लीमान एनजाए वो स्पर्स से बात कर रहा है, जबकि रिचार्लिसन ही कैन मूव द अदर वे। ये सब कुछ हो रहा है, सो कुछ कल सुबह तक काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो द ट्रांसफर्स टू वॉच बिफोर विंडो क्लोजेस, तो 15 June को खुलेगा, लेकिन इससे पहले क्या होगा, जूलियन अल्वारेज, एंजो फर्नांडेज, कोडी गाकपो, इस्माइल असार, ये फुटबॉल के बड़े नाम हैं जो अभी तक मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो जूलियन अल्वारेज बार्सिलोना या आर्सेनल में, ये भी फाइनलाइज करना है। एंजो फर्नांडेज बिग मनी ट्रांसफर मैनचेस्टर सिटी के लिए, पैसों को लेकर अभी प्रॉब्लम हो रहा है। लामिन कमारा टू चेल्सी, वो भी एक काफी अच्छी डील है। कोडी गाकपो टू मैनचेस्टर सिटी और टोटनहम हॉटस्पर, टोटनहम हॉटस्पर अभी तक हार नहीं माना है। इस्माइल असार लिवरपूल की ओर, तो ये सब कुछ हो सकते हैं ट्रांसफर, आज देखना है। वैसे आज इस प्रीमियर लीग के दूसरे सप्ताह का आखिरी मैच होगा, इट्स द चैंपियंस, देयर चैंपियन आर्सेनल का मुकाबला एस्टन विला से होगा। अगर पिछले सीजन देखा जाए तो एस्टन विला डिड वेल, और लेकिन इस सीजन शुरुआत तो उतनी ठीक नहीं है, इसीलिए इस मैच में आर्सेनल का पल्ला भारी हो सकता है। और खासतौर पर आपको पता ही है, आर्सेनल ने धुआंधार तरीके से इस प्रीमियर लीग की शुरुआत की है, जबकि

0: वी कैन सी एस्टन विला की हार हुई थी 4-0 से. सो कितना आज रोक पाएंगे आर्सेनल को देखना है. मैनचेस्टर सिटी हल सिटी 6 points, चेल्सी 6 points, ब्रेडफोर्ड 4 points, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऊपर आ गया है, दे हैव 3 points. कहाँ हैं यूनाइटेड वाले? 10वें पोजीशन पे. ओके, जबकि लिवरपूल नीचे हैं 13वें पोजीशन पे विथ 2 points. टोटनहम हॉटस्पर द बिग सरप्राइज, टोटनहम हॉटस्पर अभी बॉटम पोजिशन पे है, लास्ट पोजिशन. स्पेन के ला लीगा में भी आज मैच, ओसासुना वर्सेस गेटाफे, बार्सिलोना रायो वालेकानो. इटली के सेरी आ में लेचे वर्सेस रोमा, अटलांटा बोलोनिया. राइट, तो ये सब मैच आज के लिए. टेनिस की बात कर लें, टेनिस जहां पर नोवाक जोकोविच आज सुबह हार गया, अनफॉर्चुनेटली उसकी हार हुई और रोते हुए, he was in tears during his first round exit. और बाकी जो मैच है, सबालेंका अगेंस्ट ओजोरियो, साफुलिन अगेंस्ट अल्काराज, नावोने ने जोकोविच को हराया, तो बताया किने ने विनस विलियम्स को हराया. सो नॉट अ गुड रिटर्न फॉर विनस विलियम्स. सिटीपास खेलेगा मोफिस के खिलाफ, विटोलिना जीत गई सिरा के खिलाफ, बुब्लिच ने भी अपना मैच जीता, नावारो अभी बॉसों के खिलाफ आगे हैं. सो ये सभी मैच, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस ओपन. दैट्स इट. अभी भारतीय क्रिकेट टीम बता रही थी, महिला टीम कल थाईलैंड के खिलाफ जीत गई. ये एशिया, विमेन एशिया कप है, इस पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे. और साथ साथ में आपको पता है कि अगले साल लगभग एक महीने, अभी राइट अगस्त महीने में दी जे डे जील शुरू होने वाले हैं, और इसके लिए हमारे एथलीटों का जुटाव लगा ड्यूरिंग द वीकेंड. और हमारे बाकी जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ. ये लोग स्विमिंग के लिए कॉम्पिटिशन में जा रही हैं, जूडो के लिए भी, ये सब. सो हमारी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन है मोरिस, ये बोट्सवाना के लिए आज रवाना होगी, जहाँ पर अफ्रीकी चैंपियनशिप जोन 4 2-5 सितंबर को. तो ये आने वाले हिंद महासागरीय टापू खेलों के लिए एक प्रिपरेशन के रूप में है. That's it, the latest from the sports world.
1: Thank you so much, Arvind Ji.
0: Welcome.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: North, South, East or West, tune into the very best. Radio Masti.

0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides.
0: RM2.
2: आई रियली होप कि ये जो फिल्मी राइड्स हैं इट्स गोइंग ऑन वेरी गुड फॉर यू विद दिस ब्यूटीफुल एंड बॉलीवुड के गाने जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सो चेक योर टाइम गाइस स्टूडियो की घड़ी में 5:09 हो चुके हैं विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम सो माय डियर लवली लिसनर्स जितने भी प्यारे प्यारे ड्राइवर्स हमें सुन रहे हैं आप रोड पे हो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो और देखा जाए तो लाइफ भी कुछ ऐसी ही है ना हर किसी का अपना रूट है अपनी स्पीड है और अपनी डेस्टिनेशन होती है इसलिए किसी और अपनी जर्नी जो है ना कभी कंपेयर मत करो जी किसी की कार किसी की गाड़ी जो है ना हमेशा फास्ट जाती है किसी की स्लो जाती है बट रिमेंबर स्लो डजंट मीन यू आर लूजिंग एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग फॉरवर्ड यू आर डूइंग गुड माय डियर अगर किसी ने आपको बोला नहीं तो जस्ट टू रिमाइंड यू राइट नाउ दैट यू आर डूइंग गुड इन लाइफ सो हाँ रोड पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में भी और ट्रैफिक मिलेगा रेड लाइट्स मिलेगी कभी डेटो भी लाना पड़ेगा और इवेंचुअली यूटर्न मारने से ये लाइफ नहीं रुकती है यू जस्ट फाइंड योर ओन वे सो ड्राइवर्स टेक इट इजी स्टे पेशेंट कीप योर आईज ऑन द रोड एंड कीप योर हार्ट पॉजिटिव सेफ ड्राइविंग पीसफुल माइंड एंड हैप्पी जर्नी टू एवरीवन जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती सो इन योर रफ्तार वाइब्स अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था एक सवाल जहाँ पे सही जवाब देने पर यू कैन विन अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव ऑफ शान यस हैपनिंग वेरी सून इन मॉरिशस सो माई डियर एंड लवली लिसनर्स हमने पूछा है आपसे एक बहुत ही इजी सवाल विच कंट्री इज शान ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया नेपाल या यूनाइटेड किंगडम एंड द राइट आंसर इज ऑफकोर्स ए नेपाल ए इंडिया सॉरी इट्स नॉट नेपाल इट्स नॉट यूके ही इज ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया इज हिमसेल्फ सो मैं आपको बता दूं कि सारे लोगों ने सही जवाब दिया थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लेकिन आज का एक ही लकी विनर है जो है फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया फ्लैक एंड ही इज सनी देसाई So congratulations to you, Sunny ji. आपने जीता है ticket to watch a concert of Shan live in Mauritius. जी हाँ, so congratulations to you, my dear. Thank you so much to all those जिन्होंने participate किया है. Yes, you are आज का lucky winner. आपको याद दिला दे, this concert is organized by Gravity Zero and he's going to be live in Mauritius on Saturday, 5th of September 2026 at SVICC at Pai from 8 p.m. And tickets are on sale already on ticketbox.mu. So you guys can grab your ticket. And Sunny, आप अपना आईडी कार्ड लेके आ सकते हैं टू गेट योर टिकट फ्रॉम द एमबीसी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स सो कंग्रेचुलेशंस टू यू यू आर आज का लकी विनर

बिल्कुल जी, मौजा ही मौजा करेंगे ऐसे गाने जब लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ऑन RMT रेडियो मस्ती, तो मौजा ही मौजा होता है ना। टू ऑल दोस हू आर ड्राइविंग राइट नाउ, ड्राइव केयरफुली, अ बिग शॉट आउट टू ऑल ड्राइवर्स, ऑल पैसेंजर्स, ऑल कंडक्टर्स भी जो साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, दैट्स गणेश ऑन RMT रेडियो मस्ती, विशिंग ऑल ऑफ यू टू हैव अ ग्रेट मंडे आफ्टरनून अहेड। टू ऑल दोस जो ऑलरेडी घर पे पहुंच चुके हैं, आराम से बैठ जाइए, जस्ट टेक आउट सम टाइम फॉर यू माय डियर, उसके बाद काम पे लग जाना। आई बोलते बिल्कुल ठीक है ना।

खूबसूरत गानों का ये सिलसिला जी हाँ एवरी आफ्टरनून इन योर रफ्तार वाइब्स एंड अग्निशा लेके जाते हैं ऑन योर फिल्मी राइड्स आई रियली होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट टाइम 5:32 हो चुके हैं 12

0: to Radio Masti.
1: Play karo, smile karo, Bollywood ke saath chill karo, dil se Bollywood. Radio Masti.
2: Such beautiful and lovely गानों का प्लेलिस्ट स्पेशली हम लेकर आते हैं चंचन करा स्पेशली फॉर यू माय डियर एंड लवली लिसनर्स ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती ऑन 5491294 पर आई एम गेटिंग सच लवली लवली मैसेजेस एंड वी हैव दिया जो बोलती है अगला गानों के हस्बैंड अवेश के लिए दो प्यारी जो बेटियां हैं मेघ नाइन योशाना के लिए बच्चे जो है खेल रहे हैं और आप गर्मा गर्म कॉफी पी रहे हो और साथ में यू आर कुकिंग डिनर और आप हैं पोब्लॉ से सो थैंक यू सो मच एंड कुराज टू यू माय डियर एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड चलिए जी आई हैव गॉट the next one nice time in the kitchen my dear I'm loving the song selection play nice song for Shinaz Jogi of Riviera Durand for all my friends and family thank you so much aur kisi ne bola hai ki Kongoma mein barsaat ho rahi hai so good afternoon Radio Masti team thank you so much aap khana bana rahe hain aur hamara saath de rahe hain and chaliye ji aaj agar hum wo bolte hain chaata kholenge to ur hi jayenge itni tez hawa hai Suya Byagi hai jo hai saath de rahi hai thank you so much Suya ji so the next one goes out to you as well and chaliye ji to all my dear lovely listeners aap hamesha mausam ka haal bata dijiye aap log kahan se hamara saath de rahe ho aur mausam kaisa hai aapke yahan pe barsaat ho rahi hai ya nahi and yes to all drivers pay attention please agar aap drive kar rahe ho aur aise mausam mein jaisa ki hum bol rahe hain ki kuch jagahon pe barsaat ho rahi hai agar barish ho rahi hai so please drive carefully kyunki aise barsati mausam mein road jo hai kafi slippery hote hain so dheere dheere hole hole and keep on listening to your number 1 radio station yani ki
0: RM2 Radio Masti

Message, eh? You ready? Let's go.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2।
2: तो चलिए जी, ये गाना खूबसूरत सा हम लेकर आए हैं सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ों में, खासकर आप लोगों के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। आप इस गाने को आराम से सुन लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। एंड यस, इस गाने के बाद लेके जाएंगे हमारे 6 बजे की समाचारों की ओर, और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती।

0: पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी हालात बहुत ही गंभीर बने हुए हैं। हजारों लोग अब भी लापता हैं और दुर्गम इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी हैं। नेपाल में जमीन पर कैसी है स्थिति, इसे लेकर नेपाल के पत्रकार दिवाकर राय से खास जानकारियां इस बुलेटिन में। सड़क हादसों और नशे में गाड़ी चलाने के बढ़ते मामलों के बीच सड़क सुरक्षा कानून को और कड़ा करने की तैयारी है। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल राष्ट्रसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें वाहन जब्त करने से लेकर सजा बढ़ाने तक कई अहम बदलाव प्रस्तावित हैं। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन का अब पहले ही अनुमान लगाया जा सकेगा, इसके लिए एक नया एप्लीकेशन शुरू किया गया है, जिसमें रिटायरमेंट की उम्र सहित कई बातों के आधार पर पेंशन की रकम का हिसाब लगाया जा सकता है। मॉरिशस की सहकारी संस्थाओं के लिए विदेशी बाजारों तक पहुंच आसान बनाने की पहल की गई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मकसद स्थानीय सहकारी संस्थाओं को अपने सामान मॉरिशस से बाहर बेचने और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने में मदद देना है। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी CSO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। और अब समाचार विस्तार से। हिमालयी क्षेत्र में आई विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी नेपाल में हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं। कई इलाके अब भी तबाही के निशान समेटे हुए हैं। हजारों लोगों का कोई पता नहीं और बचाव दल समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं। सबसे कठिन तलाश उन सुरंगों में चल रही है, जहां हाइड्रो पावर परियोजनाओं के सैकड़ों कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। दुर्गम पहाड़ी रास्ते और मलबे के बीच राहत अभियान लगातार जारी है। पड़ोसी तिब्बत में भी इस आपदा का भारी असर पड़ा है। नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ के बाद कैसे हैं हालात, सुनते हैं इस रिपोर्ट में आस्था गोबिन चितामन के साथ।
1: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 6 दिन बाद भी तबाही का पूरा आंकलन नहीं हो पाया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार नेपाल में अब तक कम से कम 903 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,247 लोग अब भी लापता हैं। इनमें 3,655 नेपाली नागरिक और 592 विदेशी नागरिक शामिल है। बुधवार को नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास हिमनद का एक हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टानों, मिट्टी और

0: पानी का तेज बहाव नीचे की घाटियों की ओर आया। देखते ही देखते कई गांव इसकी चपेट में आ गई। सड़कें और पुल बह गए, बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया। इस समय बचाव दलों की सबसे बड़ी चिंता हाइड्रो पावर परियोजनाओं में काम करने वाली 937 लापता कर्मचारी है। रसुवा और नुवाकोट जिलों में 11 पनबिजली परियोजनाओं में उनकी तलाश की जा रही है। आशंका है कि इनमें से कई कर्मचारी सुरंगों के भीतर फंसे हो सकते हैं। सुरंगों में जमा भारी मात्रा में मिट्टी और मलबे को हटाने के लिए मशीनों और नियंत्रित विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ सुरंगों में बचाव दल प्रवेश करने में सफल हुए हैं, लेकिन तलाश अब भी जारी है। नेपाल की सेना, पुलिस और बचाव कर्मियों के साथ भारत और चीन के विशेषज्ञ भी अभियान में मदद कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टरों के जरिए भोजन, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी सामग्री पहुँचाई जा रही है। आपदा के बाद नई चिंता संभावित भूस्खलन और पहाड़ी इलाकों में बने अस्थायी जलाशयों को लेकर भी है। अधिकारियों को आशंका है कि इनके टूटने से दोबारा बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। सीमा के दूसरी ओर तिब्बत में भी तबाही हुई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार वहां 16 लोगों की मौत हुई और 546 लोग लापता है। चीन ने 2000 से अधिक बचाव कर्मियों को अभियान में लगाया है। नेपाल में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती हजारों लापता लोगों का पता लगाना है।
1: नेपाल की तस्वीरें तबाही की कहानी बता रही हैं, लेकिन जमीन पर हालात इससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। राहत और बचाव अभियान के बीच हजारों परिवार अब भी अपनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति को और करीब से समझने के लिए हमारे सहयोगी शहजाद जुमन ने नेपाल के पत्रकार दिवाकर राय से बात की, उनको सुनते हैं।
2: More than 10,000 people have already been rescued, and we have again more than 20,000 security personnels deployed to various affected areas who are in the search and rescue operation right now. So, but the operation is being hampered by bad weather. Because it's monsoon here, and Nepal has lots of difficult terrains, and also the risk of landslide and further flooding has made the task very, very difficult. We have helicopter operations that have been affected by the weather. Looking at the scale of what happened last Wednesday, and looking at the scale of disaster that we saw and Nepal experienced, yes, there is a very, very real possibility that the death toll could rise further, unfortunately. In this situation, you know, nothing is enough, you know. No amount of money or no amount of assistance is enough. The only thing is we need to do our best. We need to, you know, give our best and try to help people in need.
1: साल की शुरुआत से अब तक हमारी सड़कों पर 103 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। 1500 से ज्यादा वाहन चालकों की अल्को टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 500 चालक ड्रग्स के प्रभाव में पाए गए। इन आंकड़ों के बीच रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल कल संसद में पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारियां इस रिपोर्ट में।
3: पहली जनवरी से अब तक यानी 8 महीनों में 1505 अल्को टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2025 में पूरे साल ये संख्या 968 थी। 494 चालकों को ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया। चिंताजनक आंकड़ों के बीच सरकार एक सख्त कदम प्रस्तावित कर रही है। उन चालकों के वाहन की जब्ती जिन्हें शराब या ड्रग्स के लिए पॉजिटिव पाया गया हो। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत पुलिस को ये अधिकार होगा कि यदि कोई चालक में शराब निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, ड्रग्स टेस्ट में वो विफल रहता है, या उसके शारीरिक व्यवहार में नशे के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, तो पुलिस उसके वाहन को जब्त कर सकेगी। 8 महीनों में सड़क हादसों में 103 लोगों की मौत, इनमें दोपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 10,254 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर पेनल्टी पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं। हाल के दिनों में रोड रेज यानी सड़क पर गुस्से और हिंसक व्यवहार की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विधेयक में रोड रेज से जुड़े व्यवहारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस नए अपराध के दायरे में हमला करना या हमले की धमकी

0: देना, अपशब्दों का इस्तेमाल, किसी आक्रामक हथियार का उपयोग, किसी वाहन को पकड़कर लटकाना, वाहन का दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश करना, वाहन को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक सड़क पर यातायात की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालना या आम लोगों में डर पैदा करना शामिल हैं। रोड रेज के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 12 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनने को भी रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत एक अलग अपराध बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5,00,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं दोबारा अपराध करने पर अधिकतम जुर्माना बढ़कर 1,000,000 रुपए और अधिकतम जेल की सजा 8 साल तक हो सकती है।
1: अच्छी तरह से देखभाल की गई आर्टेरियोवेनस फिस्टुला डायलिसिस कराने वाले मरीजों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। मॉरिशस के मरीजों को इसकी बेहतर देखभाल में मदद करने के लिए भारत से एक वास्कुलर सर्जन अपनी विशेषज्ञता साझा करने आए हैं। खून तक पहुंच के इस जरूरी रास्ते की बेहतर निगरानी के लिए अब एक नया ऐप भी मरीजों की मदद करेगा। ज्यादा जानकारियां करुणा लालू के साथ।
0: कच्छ मिलिटिया की मेडिक्लिनिक में एक चिकित्सा कक्ष में श्री पी, जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, पिछले 15 वर्षों से डायलिसिस पर हैं। उनके रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उनके पास एक आर्टेरियोवेनस फिस्टुला यानी कि AVF है, लेकिन इस फिस्टुला की सुरक्षा और नियमित निगरानी आवश्यक है। मरीजों को इसकी बेहतर देखभाल करने में मदद करने के लिए भारत से एक वास्कुलर सर्जन को मॉरिशस आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर हिमांशु वर्मा कहते हैं,
2: We train them by a special technique, by giving them stethoscopes, and we trained them how to listen to their fistula themselves. This technique will enable them to identify the problems in their fistula before it fails. That is a time window you can still fix it.
0: एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिसकी मदद से मरीज अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख सकते हैं और अपनी AVF की निगरानी कर सकते हैं। इसमें खास तौर पर अपने रक्तचाप की नियमित जांच और निगरानी की सुविधा शामिल है। मॉरिशस में लगभग 1500 मरीज डायलिसिस पर हैं, इनमें से करीब 150 मरीज अभी एक कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं जिसे उदाहरण के लिए गर्दन में लगाया जाता है और जिसके जरिए डायलिसिस किया जाता है।
3: कैथेटर दी प्रोन टू इन्फेक्शन ए एंजिमोन सी डी गेन इन्फेक्शन दी कैपेबल डेवलप एंड सेप्टिसेमी एस कैपेबल कुट मेम सू ला वी।
0: इसका उद्देश्य मरीजों को अपनी फिस्टुला को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने में मदद करना है, क्योंकि एक AVF कई वर्षों तक मरीज का साथ दे सकती है। डायलिसिस किसी मरीज के जीवन का अंत नहीं, कुछ मरीज इसके साथ कई वर्षों तक और कभी कभी कई दशकों तक भी जीवन जीते हैं।
1: रिटायरमेंट की उम्र में मिलने वाली पेंशन की गणना करने वाला ऐप पिछले सप्ताह लॉन्च किया गया। इस सिमुलेशन में कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे रिटायरमेंट की उम्र, महंगाई और रिटायरमेंट की उम्र के आधार पर कटौती और बोनस की व्यवस्था। मॉरिशस की सहकारी संस्थाओं के लिए अब विदेशी बाजारों के दरवाजे खोलने की पहल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने आज गो एक्सपोर्ट कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य स्थानीय सहकारी संस्थाओं को अपने सामान मॉरिशस से बाहर बेचने और निर्यात की दिशा में आगे बढ़ने में मदद देना है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब EDB की योजनाओं के जरिए पहले ही सैकड़ों स्थानीय कंपनियों को निर्यात के लिए वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। और विदेश खबरों में, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी CSO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हैं। इस दौरान वे सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। पेश है रिपोर्ट।
4: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में हिस्सा

0: लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। बिश्केक पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने वहां विभिन्न समुदायों के लोगों से मुलाकात की। उनके होटल में वंदे मातरम के नारों के साथ उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान माँ तुझे सलाम पर योग की प्रस्तुति हुई, साथ ही भगवान शिव पर आधारित एक सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया गया।
1: बहुत-बहुत धन्यवाद।

0: अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल जाकर भारत के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्प अर्पित किए और महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर किर्गिस्तान पहुंचे हैं। वे 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले 26वें एससीओ लीडरशिप समिट में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है। एससीओ इस वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरा कर रहा है। संगठन में फिलहाल 10 सदस्य देश हैं। भारत के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस इसके सदस्य हैं। किर्गिस्तान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि भारत क्षेत्र में सुरक्षा, संपर्क और अवसरों को आगे बढ़ाने के अपने दृष्टिकोण पर काम करना चाहता है। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए एससीओ देशों के साथ मिलकर काम करने की भी बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी का बिश्केक दौरा उनकी 2 दिवसीय उज्बेकिस्तान यात्रा के बाद हो रहा है।
1: प्रीमियर लीग के दूसरे दिन के मुकाबले जारी हैं और इंग्लैंड के मैदानों पर एक बार फिर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इप्सविच को 5-2 से हराया, जबकि चेल्सी को ब्राइटन को हराने के लिए आखिरी तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। स्कोर 4-3 रहा। करुणा लालू।
2: ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पीछे रहने के बाद शानदार वापसी की और फिर मैच पर पूरी तरह अपना दबदबा बना लिया। 29वें मिनट में डेविस ने टक्टर बॉयज के लिए पहला गोल किया। 40वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल कर दोनों टीमों को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच की कमान अपने हाथों में ले ली। 56वें मिनट में ग्रीव्स ने गोल कर यूनाइटेड को बरहद दिला दी। शानदार प्रदर्शन कर रहे रेड डेविल्स के कप्तान ने फिर कमाल किया। ब्रूनो फर्नांडिस ने 61वें मिनट में पेनल्टी पर अपना दूसरा गोल दागा और 68वें मिनट में एक और गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। एम्ब्यूमो ने भी गोल कर जश्न में अपना नाम जोड़ा, जबकि अतिरिक्त समय में अकपुम ने गोल कर अंतर कुछ कम किया। अंतिम स्कोर 5-2। ये जीत माइकल कारिक की टीम के लिए काफ़ी राहत देने वाली रही, खासकर हल सिटी के खिलाफ बेहद खराब शुरुआत के बाद। वहीं चेल्सी ने भी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ब्लूज ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में ब्राइटन को 4-3 से हराकर अपनी दूसरी जीत हासिल की। लाविया ने मैच के 4वें मिनट में ही गोल कर चेल्सी को बरहद दिला दी। इसके बाद 14वें मिनट में पेड्रो नेटो ने दूसरा गोल दाग दिया। फिर 32वें मिनट में जोआओ पेड्रो ने गोल कर चेल्सी की बरहद और मजबूत कर दी। इसके ठीक 3 मिनट बाद ब्राइटन ने यालकुए के गोल से वापसी की कोशिश की। दूसरे हाफ में सिगल्स ने अंतर और कम कर दिया। 63वें मिनट में जोआओ पेड्रो ने आत्मघाती गोल किया, लेकिन 74वें मिनट में पाल्मर ने शानदार शॉट के जरिए ब्लूज को फिर से राहत दिलाई। और हालांकि अतिरिक्त समय में 96वें मिनट पर ग्रॉस ने एक और गोल कर अंतर कम किया, चेल्सी ने अपनी बरहत बरकरार रखी। अंतिम स्कोर 4-3। 2 मैच 2 जीत। चेल्सी ने अपने धमाके

0: धमाकेदार आगाज की पुष्टि कर दी।
1: और अब पेश है मौसम संबंधी जानकारियां। मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज हवाएं चल रही हैं। आज रात बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर कहीं कहीं कोहरे भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 16 और साहिली इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों पर। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 19 से 22 और साहिली इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में 3.5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:18 पर सूरज निकलेगा।

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ देर में शोक समाचार सुन सकेंगे। इकबाल रोड विच एमिल त्रियोली में 58 साल के 58-year-old के जनाब अशरफ चेदी, जो अशरफ से ज्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 8:30 उनकी बेगम बीबी रुखसाना मुनबहाल के घर इकबाल रोड विच एमिल त्रियोली से उठाकर गिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। रॉयल रोड रोजबेल में सुपरकाश के पास 45 साल की 45-year-old की मिसेस बीबी फजाना महमूद अली पैदाइश नाम इस्लाम और जो फजाना से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज रात 9:00 उनके दामाद मोहम्मद यशिर परमिसा के घर रॉयल रोड रोजबेल सुपरकाश के पास से उठाकर प्लेनमायों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। अवोका स्ट्रीट मौलाशो में 70 साल की 70-year-old की श्रीमती शीला सिचोन पैदाइश नाम मंगा की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 उनके बेटे राकेश सिचोन के घर अवोका स्ट्रीट मौलाशो से उठाकर काथोकोको की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। जबुलेन थोबिश रोड त्रियोली में 78 साल के 78-year-old की श्री बाबू राव दुखी, जो विजय से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले कृषि उद्योग मंत्रालय आब्याकोम्बरी में काम करते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सपहर बाद के 3:00 उनकी पत्नी जयंती दुखी के घर जबुलेन थोबिश रोड त्रियोली से उठाकर तेमिनिस त्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 3 PM। शेनफिल रोड रिवियर जुरंपो में 66 साल के 66-year-old के श्री देवानंद रामबरत, जो जॉर्ज से ज्यादा जाने जाते थे और रिवियर जुरंपो के CAB दफ्तर में काम करते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 12:30 उनकी पत्नी कविता रामबरत के घर शेनफिल रोड रिवियर जुरंपो से उठाकर उत्तरीव रिवियर जुरंपो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 12:30 PM। पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों में 67 साल की 67-year-old की श्रीमती ललिता गुलजा पैदाइश नाम बुलक सिंह और जो अमृता से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1:00 उनके घर पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों से उठाकर तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 1 PM। नोवेल फ्रांस में 49 साल के श्री अशोक कुमार कुरमुल, जो विशाल से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 9:30 उनकी पत्नी पिंकी और भाई धीरज कुरमुल के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर मारी

0: टैनी रूजवेल्ट का कब्रिस्तान ले जाई जाएगी और दफनाने के लिए माखीजानी का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुमारो एट 9:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स हैपनिंग ऑन ऑरेंज 2 रेडियो मस्ती स्टूडियो के घर में 6:35 विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। तो चलिए जी आपका स्वागत हमने कर लिया है इन खूबसूरत गानों के जरिए। फिलहाल के लिए जस्ट सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय दीज ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने।
1: प्यार तेरा प्यार प्यार प्यार प्यार तेरा

0: वेल गाइस टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग ड्राइव केयरफुली. मुझे पता है बहुत सारे जगहों पे बरसात हो रही है, तो ऐसे बरसाती मौसम में रोड काफ़ी स्लिपरी होते हैं, तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चलाना. एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड दैट्स ऑफ कोर्स
1: RM2 रेडियो मस्ती. सच

0: जी हाँ दोस्तों, क्या से क्या हो गया, देखते देखते अभी एक पल में कुछ और हो जाता है और दूसरे पल में कुछ और। अब जिंदगी इसी का नाम है, यू कांट एक्सपेक्ट कि एक सिचुएशन एक जैसा ही हो, एंड इसलिए हमेशा हर एक सिचुएशन में आपको हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। एंड जैसा भी सिचुएशन हो, नेवर एवर स्टॉप लिसनिंग टू RM2 रेडियो मस्ती, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है आपका डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। और हम तो चाहते हैं ही कि हमारे गीतों को सुनने के बाद आपको मौका मिले टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज, और साथ में आप जब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो हम खुद इतने खुश हो जाते हैं कि क्या कहें। और चलिए, आपकी खुशी को दुगनी करने के लिए वी हैव योर सेगमेंट जहां पर हम आपको पैम्पर करते हैं, यानी कि मैसेजेस डेडिकेशन भेजने का सेगमेंट, एंड वी विल बी वेलकमिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। जी हाँ, मैजिकल नंबर पे आप ज़रूर हमें याद कर सकते हैं, द मैजिकल नंबर इज़ 5499-1294। तो यहाँ पर 7:05 हो चुके हैं, टोल दोज हैविंग देयर मील देयर डिनर राइट नाउ, आपको बन पिछी शुभ आहार। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, 31st August ऑलरेडी, एंड कल एक नया महीना है एंड एक नई शुरुआत है। टोल दोज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्पेशल ओकेजन, ताकि आप अपनी इस शुरुआत को अंजाम दे पाएँ। एंड यस, शुरुआत की भी अंजाम होती है, सुनने में और बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किक स्टार्ट करें एक खूबसूरत जर्नी को। एंड अगर आप सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो मे बी इतना भी इंतज़ार आपको नहीं करना है। कल इट्स अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू मंथ विद अ न्यू रे ऑफ होप, तो हम यही चाहते हैं कि आप खुले बाहों के साथ सितंबर यानी कि सितंबर महीने को बहुत ही प्यार से वेलकम करें। तो फिलहाल के लिए हम आपको वेलकम कर रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज। डोंट फॉरगेट, इस म्यूजिकल जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे टिल 9 PM, और साथ में आपके मैसेजेस डेडिकेशन ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: से मोहब्बत, बिल्कुल, हम तो यहाँ पर आए दिन आपको यही सीख देते रहते हैं कि खुद से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो दूसरों को प्यार दे पाएंगे. चलिए यहाँ पर 7:19 हो चुके हैं. आप कहती हैं नमस्ते दिव्या जी, प्लीज़ अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए. मोताई ब्लॉन्स से कनेक्टेड हैं, धन्यवाद आपको भी और आपको भी शुभरात्रि. हेलो जी, गुड आफ्टरनून. एंड यहाँ पर आप कहती हैं आई एम कुकिंग, आप को गुड इवनिंग जी. एंड चलिए यहाँ पर बहुत ही प्यार से आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ. एंड नेक्स्ट वॉक गोज आउट स्पेशली फॉर यू गरिमा जी, एंड बहुत ही प्यारा सा नाम है. एंड नेक्स्ट वॉक गोज आउट स्पेशली आपके तमाम लोगों के लिए जो आपको जानते हैं. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी साथिया, टाइटल ट्रैक सोनू निगम की आवाज़ में. अगर आप कुछ ऐसे गीत सोच रहे हैं जिनको आप सुनना पसंद करेंगे तो बेशक आप हमें मैसेजेस भी भेज सकते हैं. हालांकि फ़िलहाल के लिए तो इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट शो, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं ना जो जहन में उतर जाते हैं जब लोग इसको सुनते हैं, और कुछ ऐसे गाने भी होते हैं जो ऑन रिपीट मोड डालने को बहुत ही मन करता है. तो ऐसे ऐसे गाने अगर आपके दिमाग में है, जहन में है, तो आप बिल्कुल हमें बताइएगा. एंड ये गाना हम ज़रूर आप लोगों के लिए चलाने की कोशिश करेंगे. फ़िलहाल के लिए टू ऑल दोज जो इस वक्त शायद ड्राइव कर रहे होंगे आपको हम विश करेंगे हैव अ सेफ ड्राइव, एंड टू ऑल दोस वर्किंग राइट नाउ आपको भी बों को हर्ष.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: आरएम2
1: रेडियो मस्ती.

That's the beauty of a relationship. पूछे जो कोई तो तेरा नाम दू. वाह क्या बात है. कोई ऐसा शख्स है इतना स्पेशल मिल जाए लाइफ में तो क्या बात है. Well, it's already 7:36 to all those जो इस वक्त अभी तक ड्राइव कर रही है. शायद आपने ओवर टाइम किया है और अभी आपका काम खत्म हो रहा है तो खिड़की को थोड़ा सा नीचे कर दीजिए. खुली खुली ठंडी ठंडी हवाओं का पूरा मजा लीजिए और हमारी रोमांटिक गीतों को ऐसे ही चलने दीजिए. ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम दैट यू कैन ever spend with yourself.

0: चले बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस एंड डेडिकेशन की ओर. एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर रुमिला जी. थैंक यू सो मच हमें याद करने के लिए. कहती हैं कि बहुत ही रेयरली आपको टाइम मिलता है और वो जो रेयरली है ना वो वक्त आपके लिए बहुत ही कीमती होती है क्योंकि आपको मौका मिलता है टू लिसन टू सम ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑफ रेडियो मस्ती एंड जहाँ पर आपको चिल करने का भी मौका मिलता है. दैट्स रियली नाइस रुमिला जी. अगला गाना गुजरात स्पेशली आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके पतिदेव एंड आपकी पूरी फैमिली के लिए. हाय नमस्ते दिव्या, आई एम आशा फ्रॉम बोनाकोई. प्लीज कैन यू प्लीज प्ले द सॉन्ग मेरी सांस सांस मेरे यार के लिए है, फॉर माई लव. एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पर आपका मैसेज मे बी इनकम्प्लीट आया है और इट्स द कम्प्लीट मैसेज. आई एम कन्फ्यूज, लेकिन इतना ही मैसेज आया है. सो थैंक यू सो मच आशा हमारा साथ देने के लिए. अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका मैसेज इनकम्प्लीट आया है तो प्लीज़ डू सेंड योर मैसेज वंस अगेन ऑन 5499-1294. नंबर वही है, बस आपको व्हाट्सएप पर हमें याद करना है.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. मोहम्मद इरफान गजेंद्र वर्मा की आवाज़ों में ब्यूटीफुल सा ये गाना बारिश। बारिश में अगर आपके मन की सिफारिश है कि आप कुछ और खूबसूरत ऐसे गीत सुनना पसंद करेंगे तो ऑफकोर्स आपके दिल की ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर हैं टिल 9 PM कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ। इस कारवा को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। So don't forget, it's your evening lounge, जहाँ पर दिव्या का साथ है एंड आपके मैसेजेस को हम वेलकम करेंगे on 5499-1294।

0: 8:06 मिनट हो चुके हैं. थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. वी फील रियली लव्ड एंड स्पेशल. और वैसे कहते हैं ना कि हर एक रिलेशनशिप में ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप स्पेशल फील करें. एंड स्पेशल फील करने से पहले आपको दूसरे को भी स्पेशल फील कराना होता है. एंड आई जस्ट होप कि आपके रिलेशनशिप में बस आपस में आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे और आपका प्यार हमेशा दिन ब दिन बढ़ता रहे और बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपस में बस बनता रहे. एंड आई जस्ट होप कि हमारा और आपका रिश्ता भी ऐसा ही बस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे. एंड ये रिश्ता इतना खूबसूरत है कि इसको एनहांस करने के लिए हम रोज़ रोज़ नजराने के तौर पर पेश करते हैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक गाने. सो चलिए, इट्स अ वंडरफुल मंडे इवनिंग. मंडे के आते ही सब लोग स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, स्पेशली मंडे मॉर्निंग बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मंडे इवनिंग के आते आते धीरे धीरे करके आप इस रंग में रंग ही जाते हैं. एंड कल ट्यूसडे है, बैक टू डेली रूटीन. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही टाइम बचा है फॉर वीकेंड टू कम, लेकिन ये पूरा महीना ही ख़त्म हो गया. इस वीकडे का क्या आप इतने बार इतने सोच रहे हैं कि बस फ्राइडे दूर है? तो लेट मी टेल यू, फ्राइडे दूर नहीं है, ये बस नज़र और नज़रिए की बात है. बस आप अपना काम करते रहिए मन लगन के साथ, एंड आप देखेंगे पलक झपकते ही ये फ्राइडे आ ही जाएगा. सो चलिए, तब तक के लिए हम भी कुछ और खूबसूरत गीत के साथ आपको एंटरटेन करते रहेंगे. टू ऑल दोज डूइंग नाइट शिफ्ट, आपका भी काम बहुत ही प्यार से और आराम से ख़त्म हो जाएगा. बस आपको जुड़े रहना है विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक एंड ऑन द नंबर वन रेडियो स्टेशन विच इज़ RM2 रेडियो मस्ती.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: बिलीव मी दोस्तों, जो दुआ आप अपनों के लिए भेजते हैं और करते हैं वो कभी आसमानों से टकरा कर वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वो कुदरत के पास चले जाते हैं एंड बरकत बनकर अपनों पर बरस जाते हैं। चलिए, ये खूबसूरत सा गाना हरिहरन सुरेश वाडकर, विनोद सहगल एंड साथियों की आवाज़ों में ब्यूटीफुल सा ये गाना, आई एम वेरी श्योर कि इस गाने को सुनने के बाद आप एकदम नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। It's a beautiful one and चलिए आंखें बंद करके इस गाने को महसूस कीजिएगा।

Wow, such a beautiful gana from the movie Dil Se. And चलिए कुछ और खूबसूरत आपके messages की ओर हम बढ़ेंगे. Shweta Hukum, as usual, connected है from Bunaka. You want to dedicate a romantic gana for husband Roshan from wife Rani. Want to tell him I love you so much. And as usual, हमारी प्यारी सिटी नाजे connected है. Thank you so much हमारा साथ देने के लिए. Full on volume, गर्मा गर्म dinner already परोस चुके हैं आप family को. And थैंक यू सो मच. नेक्स्ट गाना गुज आउट टू योर बेस्टी रागिनी और उनके पति के लिए जो इस वक्त हमारे शो को सुन रही हैं. एंड टू ऑल योर लव्ड वंस एंड योर स्वीट फैमिली, थैंक यू सो मच. ज्योति जी और वर्षा तो बनागैस जो इस वक्त हमें सुन रही हैं. नेक्स्ट गाना जाएगा फॉर आशनी रेखा सुरेखा मदब फैमिली और हमारे लिए भी. दैट्स रियली सो स्वीट ऑफ यू. फॉर माई लव राम फ्रॉम फिल्म पहली मोहब्बत. एंड यहाँ पर

अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो शायद काम करते करते हमारा साथ रहे होंगे, एंड आई जस्ट होप दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम. वैसे काम करते करते जब गुड म्यूज़िक का साथ होता है तो बस वक्त आराम से कटने लगता है और प्यार से भी. सो हमारा साथ देते रहिए. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है रात्रि के 9 बजे तक.

0: रेडियो मस्ती।
1: कैसे कटेगा हर पल अगर आपके दिमाग में और आपके जहन में यही बात उतर रहा है तो लेट मी टेल यू कि ये पल बहुत ही आराम से कटेगा खूबसूरत गीतों के साथ। वेल छोड़े जा रही हैं आपको इस खूबसूरत गीत के साथ कुछ और खूबसूरत गीतों का कारवां नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए 24/7। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: Well, कभी कभी जिंदगी एक गाने की तरह होती है. जिंदगी एक गीत है, धीरे धीरे शुरू होती है, फिर किसी खास के साथ एक खूबसूरत मेलोडी बन जाती है, और वो ही मेलोडी बन जाती है हम सफर. माने कि हाँ, आप ही के बारे में कह रहे हैं. थैंक यू सो मच.

0: Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: आज की रात चांद भी कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि किसी के दिल में मोहब्बत का नया गीत बज रहा है।

जिंदगी की सफर में हर मोड़ पर एक नया सुर मिलता है, लेकिन जब साथ हो अपना हम सफर तो हर रास्ता एक रोमांटिक सॉन्ग बन जाता है। सो व्हाई नॉट डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू यू ऑल माय डियर लिसनर्स।

प्यार भी ना एक ऐसा म्यूजिक है जो ना दिखता है ना छूता है, बस महसूस होता है दिल के हर कोने में. ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू. जो भी होता है, जो भी हम फील करते हैं म्यूजिक के जरिए, धुनों के जरिए, मेलोडीज के जरिए, इसलिए तो हम कहते हैं कभी कभी खामोशी भी इन लफ्जों को अपनी जुबान से बयां कर जाती है.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: कभी किसी की मुस्कान आपकी जिंदगी का फेवरेट गाना बन जाए तो समझ जाए आपको प्यार हो गया है. Are you in love with these songs? तो बस इन गानों के जरिए अपने मूड को एकदम खूबसूरत, एकदम रोमांटिक बनाते चलिए, क्योंकि ये रात भी आपके लिए रोमांटिक हो ही जा रही है.

एक सफर सुहाना, नहीं वो तो किशोर कुमार ने गाया था, लेकिन जब साथ हो कोई अपना तो ये सफर भी सिर्फ सुहाना नहीं यादगार बन जाता है। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स नीतू के साथ रात्रि के 12 बजे तक। थैंक यू सो मच हमारे म्यूजिकल हम सफर बनने के लिए। एंड बोन कॉन्ग्रेट्स टू ऑल दोस एट वर्क। और अगर आप रास्ते पर होंगे, यू माइट बी ड्राइविंग बैक होम, देन प्लीज ड्राइव केयरफुली, एंजॉय कीजिएगा इन नगमों को।

वैसे दिल जो होता है ना, हम कहते हैं दिल तो पागल है, दिल बच्चा है। हर दिल के पास एक गाना, एक अपना गाना होता है, और जब वो गाना किसी खास से जुड़ जाए तो वो बन जाता है लव स्टोरी। आपकी प्रेम कहानी भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से शुरू हुई होगी और आज भी वो कहानी जारी है। सो मुबारक हो आप सबकी जोड़ियां सलामत रहें।

जिसे कहते हैं कि मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता, ये तो बस एक एहसास है जो कभी भी कहीं भी किसी के लिए हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, कभी कभी ये तुक्का मार जाता है लव एट फर्स्ट साइट और जिंदगी भर का प्यार बन जाता है, लेकिन कभी कभी प्यार धोखा भी दे जाता है, तकलीफ भी दे जाता है और दिल भी टूट जाता है। तो आप अपने प्यार को संजो कर रखें, आपके पास है, उनको समेट कर सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: अगर जिंदगी एक किताब है तो प्यार उसका सबसे खूबसूरत चैप्टर होता है। आपने भी अपने प्यार का चैप्टर खोला होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा इतने सालों से, जिसे हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। अगर नींद आ रही है तो ये गाने आप सुनते चले, आपकी कहानी खुद ब खुद लिखती चली जाएगी।

कभी किसी के साथ खामोशी में बैठकर कभी सुकून मिले शायद इस वक्त, लेकिन खामोशी में भी कुछ न कुछ सुनाई देती है। क्या है वो? शायद आपके दिल की धड़कने, शायद किसी के अनकहे अल्फाज। तो समझ लीजिएगा कि वो ही आपका हमसफर है।

गाने तो मस्त चल रहे हैं, लेकिन दिल से निकली हुई बातें और हल्की सी मुस्कान बस इतना ही काफी है एक खूबसूरत रिश्ते को जीने के लिए। रिश्ते तो सब बना लेते हैं, लेकिन अटूट जो पवित्र रिश्ता होता है वो सबसे खास, वो सबसे स्पेशल होता है। ना कि एक महीने दो महीने के रिश्ते, लेकिन ये जो रिश्ता होता है जन्मों जन्मों तक का जो हम रिश्ता कहते हैं वो सबसे स्पेशल होता है। तो आप भी अपने स्पेशल रिश्ते को यादगार बनाते चले लेट नाइट ग्रुप्स के साथ।

लता जी ने गाया अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये इश्क भी एक अजीब सा राग है, जितना सुनो उतना ही गहरा होता है। सागर से गहरा होता है प्यार और हर बार दिल को छू जाता है। तो अगर आप म्यूजिक के सागर में डूबना चाहते हैं, प्यार के सागर में डूबना चाहते हैं, देन रेडियो मस्ती के हम सफर बन जाइए।

That's true. कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं बस एहसासों से बनते हैं, जैसे एक प्यार सा गीत जो सिर्फ दिल ही समझता है। दिल बच्चा है, पागल है, लेकिन दिल सब कुछ जानता है, क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाता है। तो कहीं डाउट हो अगर आपके दिमाग में, तो बस अपने दिल से पूछेगा क्या करें, क्या कहें, कैसे करें, वो सब कुछ आपको बता देगा।

आज की सुनहरी रात में अगर आपके पास कोई है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं तो उन्हें एक बार जरूर कह दीजिए I love you, je t'aime, mon amour, whatever you want to say क्योंकि मोहब्बत छुपाने के लिए नहीं है जीने के लिए होती है तो आप ही अपने प्यार को पूरी तरह से जिए शिद्दत से जिए सम्मान से जिए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाती है टेक केयर गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स बाय बाय

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: ये मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।